0: Mirci. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vinfa la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या करना है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप 9 ड्रॉप मान लो, 9 करते हो आप, 2 कह रहे हो, मैं तो 9 पकड़ के चल रहा
1: हूं। 2, 4, 9 का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप 3 ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर देगा।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर कंप्लेंट नहीं कर देगा,
2: मैं निकलवा लूंगा। ठीक है, और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे।
1: हां ठीक है, देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जितनी बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो एंड यू आर गेटिंग नॉटी, यू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ तृप्ति डिमरी. आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा ना, जूते पड़ेंगे इतनी जोर से.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: बट यू नो व्हाट, वी आर नॉन जजमेंटल आउट देयर. अपनी कन्फेशन जस्ट हिट मी अप विद इट, वी विल टॉक अबाउट इट, आई विल रोशिफाई यू एंड फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी डॉल.
4: हेलो, हाय रोशि, कैसे हो आप?
2: हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ. आपकी कन्फेशन इतनी स्पाइसी लग रही है कि मेरी फ़ोन लाइन ऑलरेडी ऐसे सोच के आपकी कन्फेशन के बारे में ऐसे कड़कड़ फिस फिस कर रही है. बट हिट मी विद योर कन्फेशन, क्या है आपकी स्टोरी?
4: हाँ, कन्फेशन तो क्या स्पाइसी है, आई एम फीलिंग अ बिट गिल्टी एज वेल.
2: ओके,
4: क्योंकि यस, सो क्या है ना कि मुझे ना मेरे कॉलेज प्रोफेसर पर क्रश है.
2: ओके,
4: ठीक है. आई रियली लाइक हिम.
2: ओके,
4: ठीक है. बट ऐसा तो आपने पहले भी सुना होगा.
2: हाँ.
4: जो आपने नहीं सुना होगा वो मैं आपको बताती हूँ
2: आज. ठीक है, हिट मी विद इट.
4: यस, तो द थिंग इज कि मेरे को ऑब्वियसली यू नो गर्ल्स आर सच स्टॉकर्स, तो मैंने सारी कुंडली निकाल ली, मुझे मैंने सब कुछ पता कर लिया कॉलेज प्रोफेसर के बारे में. एंड मुझे पता चला कि उनका एक भाई है जो मेरे ही बैच में पढ़ता है और यू नो दैट थिएटर क्लब, उसमें वो है. एंड जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सीधा वो क्लब ज्वाइन कर लिया. है ना, मैं सोचा चलो थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी इसी चक्कर में. तो यू नो मेरी बात हुई उससे, होती रही है, एंड यू नो कब मैंने उसे पटा लिया, ये समझ लो आप. ठीक है, सो आई हैव अ क्रश ऑन माय प्रोफेसर, बट मैंने उनके भाई को पटा लिया है. एंड प्यार हुए करते ही उससे, मैंने बस उससे इसलिए पटा है जिससे कि मेरा थोड़ा आना जाना रहे उनके घर पे. समझ रहे आप,
2: दिस इज सो वाइल्ड. तो जब आप उनके घर जाते हो, अपने कॉलेज प्रोफेसर के घर, द वन दैट यू हैव द हॉट्स फॉर, वो आपको देख के ये नहीं सोचता कि मेरे छोटे भाई की इतनी प्यारी छोटी गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स.
4: हाँ, यू नो मतलब जब वो नहीं होता ना मेरे साथ, तो तब मैं उन्हें ताड़ती रहती हूँ, मैं उनके साथ ही बातों में लग जाती हूँ.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मैंने अपनी जिंदगी की पहली गरबा पार्टी अटेंड की. इफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ इट वेंट, लेट मी टेल यू, एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो तो इट वॉज अ डिजास्टर. क्योंकि सबसे पहले तो मुझे डांडिया खेलना नहीं आता. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज होल्डिंग डांडिया सिक्स. पहले तो मैं दो बार खुद के लहंगे पर गिरी, विच वॉज वेरी फनी. क्योंकि आप डांस कर रहे हो लेकिन आपको चलना नहीं आता, ये आप भूल गए और आप हीरो बनकर डांस करने चले गए. इट वॉज सो एम्बैरेसिंग. एक सर्कल में ऐसे अपने खुद के लहंगे पर, सॉरी घाघरे पर, आई ट्रिप्ड एंड फेल ओवर. एंड इफ दैट वॉज नॉट एम्बैरेसिंग इनफ, जो मैंने अगला काम किया उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई भी अपने गरबा नाइट के लिए बुलाने वाला है, क्योंकि आई एंडेड अप हिटिंग माई गरबा पार्टनर ऑन हिज फेस विद माई डांडिया स्टिक. मतलब मुझे पहले बता देना चाहिए था कि आई जस्ट कम एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर एंड लुक प्रिटी, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आपने मुझसे उम्मीद की तो हो सकता है कि भाषण के अलावा आपको कुछ ना मिले. अगर आपने भी ऐसे ही कोई गरबा नाइट अटेंड की है एंड इट एंडेड अप इन अ ग्रेटर फियास्को, आपको मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना होगा, क्योंकि दैट्स दी ओनली वे आई विल एंड अप फीलिंग बेटर. और वो बताने के लिए व्हाई डोंट यू व्हाट्सएप मी फॉर अ चेंज ऑन 9930983983. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: शर्मा टेलर डाउन द रोड तो अब साड़ी स्टिच कर देता है 1500 रुपए में. कैन यू बीट दैट? आई कांट बिलीव दैट माय कजिन्स ऑन अ ग्रुप कॉल आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट दिस कि हाउ अब शर्मा जी टेलर जो है वो 1500 रुपए में मात्र आपकी साड़ी को एक नॉर्मल शिफॉन के पीस से बदल देते हैं इनटू अ प्री स्टिच साड़ी. अब आपको 8000 रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये फालतू इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रही हूँ? बिकॉज आपके लिए ये फालतू नहीं है. यू डोंट वॉन्ट टू वेयर अ सलवार कमीज बिकॉज फेस्टिव सीजन है. यू वॉन्ट टू वेयर अ साड़ी एंड लुक वेरी वेरी गॉर्जियस. लेकिन अब इसे प्लीट प्लाट करने का टाइम आपके पास है नहीं और एनर्जी भी नहीं है. तो शर्मा टेबल I promise you, I don't use any substance. I swear, magazam. Anyway, तो ये शर्मा टेलर जो है अर्थात आपके ये जो भी लोकल किराने के टेबल आपके किराने के टेलर इन्हें अपनी मम्मी की पुरानी शिफॉन की अच्छी सी साड़ी दे दो. वो आपको स्टिच कर देंगे और उसके बाद आप बिल्कुल लगेंगी द यंग एंड हॉट एंड हैपनिंग महारानी गायत्री देवी इन हर हेडेस. यू आर वेलकम फॉर दिस एंड आई एम टेलिंग यू आई एम यूजिंग नो सब्सटेंसेस. ऑन दैट नोट मैं बस जस्ट फेस्टिव सीजन की वजह से थोड़ी खुशखाश हूँ. अगर आप भी ऐसे ही खुश हो या आप शर्मा जी टेलर नॉट टेबल का नंबर चाहते हो देन हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक. आई बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डू व्हाट यू नीड टू डू. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Rajas are wearing Rani Haars this festive season और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. I don't understand लोग मुझे क्यों बुलाते हैं अपने ये गरबा पार्टीज के लिए और दिवाली पार्टीज के लिए और कार्ड पार्टीज के लिए, बिकॉज मुझे इनमें से कुछ नहीं आता. ना कार्ड खेलना आता है, ना गरबा करना आता है. मैं सिर्फ वहाँ बैठ कर लोगों को जज कर सकती हूँ, विच इज़ एग्जैक्टली वट आई डिड दिस टाइम अराउंड. सो इट लुक्स लाइक इस 2026 के फेस्टिव सीजन में द गाइज आर ऑल गोना वेयर लाइक बेसिक सिल्क या यू नो तो सैटनी कुर्ते, वाइट कलर के, क्रीम कलर के, विच इज़ द कलर ऑफ द सीजन एनी वे. एंड देन ऐसे बड़े बड़े एमरल्ड एंड रूबीज के हार, डूड, लाइक वो हार मैं अपनी शादी में ना पहनूँ. बंदे पहन कर डांडिया कर रहे हैं एंड यूर लाइक यार, आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट यू फील लाइक आप किसी जगह के प्रिंस हो, लेकिन आप कर तो डांडिया ही रहे हो. इतना भी डेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं थी. बट हु एम आई टू डिसाइड फॉर पीपल इफ दिस सीजन इज ऑल अबाउट गाइज वेयरिंग बेसिक लाइक कुर्ताज एंड स्टफ एंड लाइक डेकिंग अप विद ज्वेलरी. डूड, मेरे तो अंदर से भी आवाज़ ऐसे डूड टाइप निकल रही है. आई वांट टू नो व्हाट यू आर वेयरिंग दिस फेस्टिव सीजन. और वो बताने के लिए हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

देखो ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Treat me badly once, shame on you. Treat me badly twice, shame on me. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सिटकॉम देख रही थी, उसमें ये जो बहुत ही अमेजिंग मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी वाली बंदी है समांथा, वो अपने गर्लफ्रेंड्स को बता रही है कि अगर मैं एक हुकअप में हूँ और मुझे एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो वो उस बंदे की गलती है, लेकिन अगर उस बैड एक्सपीरियंस के बाद मैं फिर से उस हुकअप में दूसरी बार जा रही हूँ देन शेम ऑन मी, क्योंकि जानते हुए मैं ये गलती दोबारा कर रही हूँ. एंड समांथा, आई हैव अ फीलिंग इज नॉट दी ओनली वन. मेरी बेस्ट For starters, is guilty of doing this. तो कई बार ऐसे वीकेंड पे नहीं होती है भाई डेट, एंड शी गोज एंड डेट्स दीज रियली बैड हुकअप्स, जो उसने कसम खा ली होती है दो हफ्ते पहले कि इसकी शक्ल भी नहीं देखेगी. कट टू, शी इज लाइक, यार मतलब डेट नाइट का सीन बन रहा था मेरे दिल में एंड मेरे पास कोई बंदा नहीं था, तो आई वेंट आउट विद दिस गाय एंड आई वाज लाइक, भाई तेरा दिल कितना ही अमेजिंग है, लाइक इट फ्लक्चुएट्स मोर देन द टाइड इन गोवा. मतलब पता ही नहीं चल रहा कब आ रहे कब जा रहे क्या हो रहा है. लेकिन सीरियसली, ये समांथा वाली एडवाइस, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ कूल. और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है दैट अगर आपके साथ किसी ने मैस अराउंड किया पहली बार, शेम ऑन देम. दूसरी बार किया, शेम ऑन यू. व्हाई आर यू गोइंग इन फॉर सेकंड्स टू स्टार्ट विद. और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जितनी बार आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो एंड यू गेटिंग नॉटी, यू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ तृप्ति डिमरी. आपकी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा ना, जूते पड़ेंगे इतनी जोर से.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: बट यू नो व्हाट, वी आर नॉन जजमेंटल आउट देयर. अपनी कन्फेशन जस्ट हिट मी अप विद इट, वी विल टॉक अबाउट इट, आई विल रोशिफाई यू एंड फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी डॉल.
4: हेलो, हाय रोशी, कैसे हो आप?
2: हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ. आपकी कन्फेशन इतनी स्पाइसी लग रही है कि मेरी फ़ोन लाइन ऑलरेडी ऐसे सोच के आपकी कन्फेशन के बारे में ऐसे कड़कड़ फिस फिस कर रही है. बट हिट मी विद योर कन्फेशन, क्या है आपकी स्टोरी?
4: हाँ, कन्फेशन तो क्या स्पाइसी है, आई एम फीलिंग अ बिट गिल्टी एज वेल.
2: ओके,
4: क्योंकि यस, सो क्या है ना कि मुझे ना मेरे कॉलेज प्रोफेसर पर क्रश है.
2: ओके,
4: ठीक है. आई रियली लाइक हिम.
2: ओके,
4: ठीक है. बट ऐसा तो आपने पहले भी सुना होगा.
2: हाँ.
4: जो आपने नहीं सुना होगा वो मैं आपको बताती हूँ
2: आज. ठीक है, हिट मी विद इट.
4: यस, तो द थिंग इज कि मेरे को ऑब्वियसली यू नो गर्ल्स आर सच स्टॉकर्स, तो मैंने सारी कुंडली निकाल ली, मुझे मैंने सब कुछ पता कर लिया कॉलेज प्रोफेसर के बारे में. एंड मुझे पता चला कि उनका एक भाई है जो मेरे ही बैच में पढ़ता है और यू नो दैट थिएटर क्लब, उसमें वो है. एंड जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सीधा वो क्लब ज्वाइन कर लिया. है ना, मैं सोचा चलो थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी इसी चक्कर में. तो यू नो मेरी बात हुई उससे, होती रही. एंड यू नो कब मैंने उसे पटा लिया, ये समझ लो आप. ठीक है, सो आई हैव अ क्रश ऑन माय प्रोफेसर, बट मैंने उनके भाई को पटा लिया है. एंड प्यार हुए करती हूँ उससे. मैंने बस उससे इसलिए पटा है जिससे कि मेरा थोड़ा आना जाना रहे उनके घर पे. समझ रहे आप,
2: दिस इज सो वाइल्ड. तो जब आप उनके घर जाते हो, अपने कॉलेज प्रोफेसर के घर, द वन दैट यू हैव द हॉट्स फॉर, वो आपको देख के ये नहीं सोचता कि मेरे छोटे भाई की इतनी प्यारी छोटी गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स.
4: हाँ, यू नो मतलब जब वो नहीं होता ना मेरे साथ, तो तब मैं उन्हें ताड़ती रहती हूँ. मैं उनके साथ ही बातों में लग जाती हूँ, अपने प्रोफेसर के साथ, यू नो. एंड आँख सीखना भी हो जाता है, मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, यू नो. सो यस, सो विन विन फॉर मी.
2: रोशिफाई कर दूँ आपको, नॉट दैट यू साउंड लाइक यू आर फीलिंग गिल्टी एट ऑल, बट जस्ट मेरा फर्ज बनता है, सो आई एम आस्किंग. वुड यू लाइक सम?
4: कर दो, जरूरत है मुझे तो.
2: लग नहीं रहा है आपकी बातें सुन के.
0: यूव बीन Roshified.
2: But honestly speaking, मेरी लाइन की कड़कड़ से ज़्यादा स्पाइसी है आपकी कन्फेशन. Just FYI.
4: Well, Roshi, मैंने सोचा आज मैं भी कुछ बता दूँ तो.
2: It was amazing talking to you. अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह you have any confession, hit me up with it. मेरे पास उसे सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान. Find me on the gram या Facebook. And while you do that, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी।

0: देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिंदगी में 1480 बार डेट करने के बाद आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लव्स हमारी जिंदगी के कभी रोमांटिक थे ही नहीं. देवर वो दोस्त जो हमारा फोन रात के 3 बजे आंसर करते थे, वो दोस्त जो हमारे साथ बैठते थे व्हेन एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट, वो दोस्त जो हमें 5 वर्जन्स ऑफ आर सेल्व बनते हुए देखते थे राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. एंड ऑनेस्टली सम फ्रेंडशिप्स आर लव स्टोरीज टू. और अगर मेरी ये बात सुनकर आपको उस एक दोस्त की याद आ रही है, देन आई वॉन्ट टू नो कि वो दोस्त कौन है और उसके साथ क्या है ये लव स्टोरी जो खत्म होते ही नहीं होती है. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. आप मुझे इंस्टा या FB कहीं पर भी ढूंढ सकते हो, एंड ज्यादा मेहनत करोगे तो अपने दिल में भी पा सकते हो मुझे. बट सिर्फ इंस्टा या FB पर ही अपना नंबर भेज सकते हो. सो डू दैट, एंड व्हाइल यू डू दैट सो दैट आई कैन गेट इन टच विद यू. एक चीज जो मैं कहती आई हूँ और कहती रहूंगी वो ये है कि जिसके पास लव है ना उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: The show starts in
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं विद तुमियो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2 जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ फ्रॉम द मूवी 1। दिस इज ठुमक ठुमक और नंबर 19।
4: नंबर 19

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माई गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये परसेप्शन किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया तो आप लिखेंगे उसके बारे में। मैं आपको बोलूँ नहीं, आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर, बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीज थिंग्स बिकॉज़ दे आर नॉट मी।
0: शायद इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: Number 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 14.

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें। तो उसके लिए मेहनत थी, ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे। और यहीं प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था। क्या कहा जा रहा है और सच क्या है, और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं ठहराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिससे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब शूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार मजा आ रहा है, कुछ अलग आवाज है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागल बन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैंने अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ध्यान में रख, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और नाना

0: सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
1: एनी।
0: आवाज पूरी नहीं निकलती लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
2: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय।
0: ये आज भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं। तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया, पर एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था। लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा। शायद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती। लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी। उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी। और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया। एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉक 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ. अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर हेलो हेलो, मैं हूँ श्रेया। और आज ना पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों के साथ बात होगी बेगम मुमताज जेहान दहलवी की। क्या कह रहे हो, नहीं पहचाने? अरे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो एक हिंट देती हूँ कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी, और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जियो जियो पलट का हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

Only on Radio Mercy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली? मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए, अभी इनके बारे में बताऊंगी। गानों के उस पार मिलते हैं ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थे तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नीलकमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल।

0: हल्ला मचाएंगे, दुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना, आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी, 1947 की, नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। एन एम केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं, बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विद मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी, इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज काफी पुरानी बात है, 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी, वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला,
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर।
0: पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं। सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी। उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है। ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था। मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा। और आप क्या, कौन है बताना मुझे। फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। अभी और भी बातें बाकी, सो वापस आऊं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी और मेट्रो के ओवर क्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल, सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, पार्टीज जाना अलाउड नहीं था, फिल्मों के प्रीमियर अटेंड करना अलाउड नहीं था, फिल्म फेस्टिवल्स जाना अलाउड नहीं था, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स, कहीं पर भी मधुबाला जी नहीं जा सकती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज उन्हीं की बातें चल रही हैं। सो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अगर मधुबाला जी को कुछ अलाउड था तो वो था सेट से घर और घर से सेट। इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद और मधुबाला जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मधुबाला जी की जिंदगी थोड़ी सी बदल दी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। देव साहब और मधुबाला जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी शूट पे कुछ फॉरेन के लोग देव साहब से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत चलती रही और मधुबाला जी अपनी चेयर पे बैठ करके देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो वो देव साहब के पास गई और उनसे पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे थे आपसे? अब देव साहब ने या तो जानबूझ करके या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे मधुबाला जी को कुछ भी बताने में, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये कह के वो वहां से चले गए, पर ये बात मधुबाला जी के दिल पे तीर की तरह लगी। घर जाते ही उन्होंने एक काम किया। What was that? अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मधुबाला जी और देव साहब की फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बता रही थी। इस फिल्म के सेट पे देव साहब से मिलने कुछ फॉरेन के लोग आए, वो कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनकी ये मीटिंग काफी लंबी चली। मधुबाला जी तब तक देव साहब का वेट कर रही थी और साथ में देख रही थी कि उस एक केबिन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से गए, उन्होंने देव साहब से पूछा क्या बात हो रही थी। देव साहब या तो बहुत जल्दी में थे या फिर उन्हें बताने का मन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये बात मधुबाला जी को तीर की तरह लगी। उन्हें ये लगा कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती इसलिए देव साहब ने उनको इंसल्ट किया। फिर क्या, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी वो हमेशा। जैसे ही ड्राइव करके घर वापस गई, उन्होंने एक फोन घुमाया। वो फोन था एक इंग्लिश ट्यूटर को। 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्राटे से इंग्लिश लिखनी सीखी और इंग्लिश बोलनी सीखी। उन्हीं की ढेर सारी बातें श्रेया के साथ आज ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे फ्रैंक कैप्रा। वो 3 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी जीत चुके थे। एक बार वो मुंबई आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया को अटेंड करने। वहाँ पे जब उन्होंने मधुबाला जी को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके वो इतने इम्प्रेस हुए कि बस वो चाहते थे किसी तरह मधुबाला हॉलीवुड आ जाए और वहाँ पे लॉन्च हो जाए। इसके लिए उन्होंने मधुबाला से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाई उनके सारे डिसीजंस तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान लेते थे। उनके अब्बा ने साफ मना कर दिया। अब वो मधुबाला को दूसरे शहर तो जाने देते नहीं थे, दूसरे देश कैसे जाने देते। सो फ्रैंक कैप्रा का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूं श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में

0: ये अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
4: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना, एंड या इफ यू मिस मी यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, दैट्स आरजे SHREYA विद लव। गुड नाइट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर। तेरी चॉइस ऑफ थिएटर।

0: में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले। एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchi।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी भी चीज बात या दूसरों के प्रति ग्रज को लेट गो करना क्यों इतना चैलेंजिंग होता है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: नवरात्रि के दिनों में, दुर्गा पूजा के दिनों में हम ये आठ भुजाओं के बारे में, विच आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आठ पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मुझे इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेशन लगा। जब हम बात कर रहे थे, हमने पावर टू टॉलरेट की बात की, पावर टू एडजस्ट की बात की। वन ऑफ द पावर्स यू सेड, आपने मुझे बताया, वो है पावर टू लेट गो। और ये मुझे बड़ा इंट्रीगिंग इसलिए लगता है कि ये सबसे डिफिकल्ट चीज है करना, क्योंकि ये जो बात होती है ना हमारे दिमाग में जो चलती रहती है, ये इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया, ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये जो चीज है, जो मेंटल साइकिल है ना, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पावर टू लेट गो जो है, चाहे वो लॉस हो, बिट्रियल हो, गिल्ट हो, एंगर हो, लव भी हो, लॉस तो है ही
4: जी,
3: ये कैसे इंसान, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट टू लेट गो,
4: होल्ड ऑन करते हैं, और जितना ज्यादा समय जिस चीज को होल्ड ऑन करते हैं उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है लेट गो करना। पहले तो करना चाहते हैं कि नहीं, That is the first thing. कई लोग करना ही नहीं चाहते, कहते मैं तो ये बात जीवन भर
3: नहीं छोड़ूंगा,
4: नहीं भूलूंगा। So you know, I have come across people जो छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चीज रियलाइज नहीं करते कि पकड़ने में नुकसान उनका है।
3: जी,
4: बना भाव ये है कि दर्द में आप हैं, बात आपने पकड़ी है, आपके मन में चल रही है, आप उस चीज में जो दर्द क्रिएट कर रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आपने पकड़ के रखी है तो शायद वो दर्द में है।
3: हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, दर्द में हम ही हैं और दुखी भी हम ही हैं।
4: हमें शायद लगता सामने है मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आई विल नेवर फॉरगिव यू। सो व्हेन वी से आई विल नेवर फॉरगिव यू, इन अ वे यू आर सेइंग, आपको पता नहीं चलता, पर इन अ वे यू आर सेइंग कि मैं हमेशा दर्द में रहूंगी।
3: हाँ हाँ, ये आपने पहले भी बात कही थी, और ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम अपने ही दिमाग में चला रहे होते हैं, हम ही परेशान हो रहे होते हैं और हम ही लेके बैठे होते हैं। शायद सामने वाला तो आगे बढ़ भी गया हो जिंदगी में,
4: वो बढ़ ही जाता है, कई बार उसको पता भी नहीं होता, कहता अच्छा मैंने ऐसे बोला था, उसको कई बार रियलाइज भी नहीं होता।
3: जी बिल्कुल,
4: कई बार तो बातें इतनी छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन सामने वाले को ये भी रियलाइज नहीं होता कि उसकी कोई भूल है। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, फुलफिल नहीं हुई होती, तो हम उस चीज के हर्ट में चले जाते हैं। इसलिए लेट गो, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डिसीजन ये लेना है कि मुझे लेट गो करना है, बातों को लेट गो करना है, कि उसको पकड़ करके रखना है।
3: जी।
4: अब क्यों लेट गो करके रखना है, सिंपल हमने देखा कि क्योंकि मैंने पकड़ के रखा है
3: तो मुझे दुख हो रहा है,
4: तो मुझे दुख हो रहा है।
3: जी।
4: तो ये अपने प्रति कंपैशनेट होना
3: है,
4: ये अपने प्रति रहमदिल होना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कैसे लेट गो करना हमारी एक शक्ति बन सकती है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: तो पावर ऑफ लेट गो में सिस्टर मुझे ये पूछना है कि इसको पावर क्यों कहते हैं, क्योंकि लेट गो करने से बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत बरसों तक उसको लेके चलते रहते हैं, इसको पावर क्यों समझा जाता है?
3: लेट गो करने से परेशानी नहीं होती, पकड़ के रखने से परेशानी होती है।
1: हाँ,
3: लेट गो करने को पावर क्यों कहते हैं? जैसे ही आपने लेट गो किया
1: तो फ्री महसूस
3: फ्री महसूस होता है। नहीं, कभी कभी हमारे पास भी लोग जब स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए आते हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं, चाहे कुछ देर के लिए भी उनको, कि आप इसको लेट गो करो या जो हो गया पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ या आप उसको फॉरगिव कर दो या माफ करो, तो एकदम उनको बहुत हल्कापन फील होता है, फ्री फील होता है, क्योंकि वो आपने पकड़ के दिया था। व्हेन यू वर होल्डिंग ऑन तब परेशानी हो रही थी, तब तकलीफ हो रही थी।
1: लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि कई बार अपने घरों में भी होता है, सबके घरों में होता होगा, कि जब एक बुजुर्ग हैं वो अपनी जिंदगी देखते हैं पीछे, या किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो बोलते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे पैसे लूट लिए, उसने मुझे ठग लिया। जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि यार ऐसा मेरे साथ हुआ, और वो बात रोज रोज दोहराते रहते हैं। तो अगर ये एक पावर है और अगर करना आसान होता तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन अक्सर हर घर में ना ये बात रिपीट पे लूप की तरह चलती रहती है। तो एक आसान तरीका कैसे है इसको चेंज करके दूसरी तरफ जाने का?
3: आसान है, मुश्किल है वो तो सेकंड स्टेप होता है
1: जी।
3: पहले होता है करना है कि नहीं करना है।
1: करना है ये तो समझ में आ रहा है, वरना हम ही दर्द में रहेंगे।
3: हाँ, पहले, क्योंकि कई लोग नहीं करना चाहते, वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो ये बात नहीं भूलनी, मरते दम तक भी नहीं भूलनी, पीछे वालों को भी कह करके जाएंगे कि मेरे जाने के बाद भी उनसे बात नहीं करना।
1: हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रही
3: हैं, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति
1: नहीं
3: मिलेगी। सो द फर्स्ट थिंग, ठीक है, अगर आपने इस चीज को रियलाइज कर दिया कि अच्छा ठीक है लेट गो करना है, तो उसमें जब भी कोई बात होती है, जैसे आप देखें आप चाय पी रहे, चाय पीते पीते थोड़ा सा गिर जाता है, तो आप पहली चीज क्या करते हैं?
1: कोई एक गीला कपड़ा लेके उसको पोंछने की कोशिश करते हैं।
3: आपने ये देखा होगा कि कई बार चाय का कप भी वहीं छोड़ देते हैं।
1: हाँ।
3: और पहले जाकर के उसको साफ करेंगे।
1: हाँ।
3: आप बेड पर बैठ करके पी रहे हैं, गिर गया तो आप फटाफट चादर उठाते हैं, क्योंकि वो चादर तक रहे
1: अंदर मैट्रेस में ना चले जाए,
3: मैट्रेस में ना जाए। माना जितना जल्दी आप करेंगे
1: उतना अच्छा होगा। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया।
3: जितना जल्दी करेंगे उतना इजी है, नहीं उतना इजी है। अभी आपको वो दाग चादर से निकालना इजी है, मैट्रेस से निकालना बहुत मुश्किल है।
1: हाँ, निकलेगा ही नहीं, वो तो मैट्रेस में रह जाता है, मैट्रेस तो आप उसको खोल के नहीं ठीक करेंगे।
3: निकल तो जाता ही है आजकल ऐसे ऐसे चीजें, मतलब भाव मेरा ये है कि कितनी भी पुरानी बात हो निकल तो जाएंगे, ये नहीं हम कह सकते, मेहनत लगती है।
1: जगजीत सिंह साहब की एक बहुत खूबसूरत गजल है, उसमें एक लाइन है कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है।
3: बस ये चीज है, वो वक्त बहुत लगता है, फिर उस वक्त में कई बार इतना पेशेंस नहीं होता, कई बार किसी को कहेंगे ना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतने इतने साल आपने पकड़ के रखा है, इतने साल आपने नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज करी है, आज आप एक दिन में सोचते हैं कि मैं लेट गो कर रहा हूं, अब सब ठीक हो जाए, वो नहीं होता है,
1: नहीं होता,
3: क्योंकि आपको वो वक्त हीलिंग के लिए, आपको भी हीलिंग के लिए वक्त लगता
1: है,
3: सामने वाले को भी हीलिंग में वक्त लगता है। तो बेटर तो ये होता है कि बहुत जल्दी लेट गो करें, उसी सेकंड करें। अगर समझो आपने किसी को कुछ बोल भी दिया, आप तुरंत उस चीज को अपोलोजाइज कर लें, या आपने कोई चीज पकड़ के रखी है, समझो आपके मन में नेगेटिव चलना शुरू हुआ, जैसे शुरू हुआ आप उसको फुल स्टॉप लगा करके जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर लें, जितना फास्ट हो, जैसे हम कहते हैं तुरंत दाग धोए नहीं तो वो दाग उतना गहरा हो जाएगा। चलो आपको उस दिन नहीं रियलाइज हो रहा, तुरंत नहीं रियलाइज हो रहा, कम से कम हर दिन के एंड में तो करना ही चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कोई ग्रज भरी हुई है और उसे हमें लेट गो करना चाहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: तो एंड में जैसे एट द एंड ऑफ द एवरी डे हमें रियलाइज हो या ना रियलाइज हो, हम क्या कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल, एक क्रिया बताइए।
3: हर चीज की एक ओरिजिनल नेचर होती है, जैसे पानी की शीतलता देना है, अग्नि की गर्माहट देना है, ऐसे ही हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो पीस है।
1: जी बिल्कुल,
3: आत्मा जो है वो शांत स्वरूप है, उसको शांति चाहिए नहीं है, वो है ही
1: शांत।
3: अगर आपको आपके ओरिजिनल नेचर एक्सपीरियंस नहीं हो रही है,
1: वरना
3: आपने कुछ पकड़ के रखा है।
1: अच्छा, तो अगर मन कौतूहल है, मन में अशांति है, तो फिर ओरिजिनल नेचर पे हम नहीं है।
3: नहीं, अब कोई डिस्कम्फर्ट है, अनइजीनेस है, ओवर थिंकिंग है, अंदर

0: अंदर आप किसी के बारे में थोड़ा बैठ जाइए, अभी दिन पूरा होने से पहले
1: बैठे हम
0: बैठे उसको, अब आप रियलाइज करें क्या है,
1: क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में,
0: क्या चल रहा है। समझो कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है किसी के बारे में, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये क्या हो रहा है, दाग गहरा हो रहा है। शांति व्हाइट है, आप उस पे जैसे ब्लैक सर्कल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे
1: हैं,
0: वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सुबह उठ करके आपको लगेगा अरे कैसा मना जीवन कैसा है, मुझे शांति चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत, लेकिन वो आपने किया अपने संकल्पों से।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब हमें दूसरों के खिलाफ कोई द्वेष हो, गुस्सा हो या ग्रज हो, उस केस में हम मन की शांति कैसे हासिल कर सकते हैं?
2: तो जब मैं शाम को बैठा और मैंने रियलाइज किया, हर शाम को मैं क्रिया करता हूँ कि यार मेरे मन में चल रहा है, तो उस समय उससे बाहर निकलने के लिए क्या करूँ?
3: रियलाइज किया, पहले तो रियलाइज किया कि पीस नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। सेकंड स्टेप रियलाइज किया क्या चल रहा है।
2: हाँ।
3: मतलब पहली रियलाइजेशन हाँ। फीलिंग की थी
2: पहले कि भाई कुछ गड़बड़ है।
3: हाँ, थॉट हाँ। नहीं पकड़ में आया, फीलिंग पकड़ में आई। हाँ। फीलिंग पीस की नहीं है, फीलिंग डिस्कम्फर्ट की, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वो फीलिंग जो अनईज की है
2: वो कहाँ से आ रही है?
3: वो आपके किसी थॉट से आ रही है, आपकी क्रिएशन है वो। किसी ने कुछ भी बोला होगा लेकिन वो आपके क्रिएशन है। फिर आपने रियलाइज किया कि कुछ वेस्ट चल रहा है। थर्ड, आप उसको ट्रांसफॉर्म करें।
2: अच्छा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या बोले अपने आपको?
3: उन्होंने बोला उनका मन ठीक नहीं होगा, अपने ही तो है, अपनों की बातों को पकड़ करके रिश्ते खराब क्यों करने, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप। अच्छा, प्यार से उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव सोचने से क्या फायदा है। यू आर, जैसे हम किसी से बात करते हैं करते हैं ना किसी से, ऐसे हम अपने से बात करके अपने को हील करते हैं।
2: दैट इज लेटिंग गो। वेरी गुड, वेरी नाइस कि जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं अच्छे तरीके से, अपने आप से भी वैसे बात करें और ये बातों को धीरे धीरे छोड़ें।
3: सब यू लेटिंग गो द पेन ना, किसको लेट गो कर रहे हैं? बात तो वही है, देखो बात तो डिलीट हो गई, कहेंगे डिलीट कर दो, तो बात तो डिलीट हो नहीं सकती। क्या डिलीट कर रहे हैं? पेन को डिलीट कर रहे हैं।
2: बहुत बढ़िया।
3: चादर तो वही है, आप दाग को डिलीट कर रहे हैं, जो आपने ऊपर से पेन क्रिएट कर लिया
2: उसको डिलीट,
3: आप उसको डिलीट कर रहे हैं, आप अपने को हील कर रहे हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Childhood trauma ko let go kaise karein?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: सिस्टर, कई बार ये जो फीलिंग होती है ना, जो चलता है दिमाग में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बार बचपन का ट्रॉमा होता है। और कभी कभी तो ट्रॉमा भी नहीं होता, छोटी छोटी बातों चीज वो गहरी, जैसे आपने वो मैट्रेस वाला एग्जाम्पल दिया कि चाय अगर ऊपर गिर जाए, अगर चादर आपने साफ कर ली तो जल्दी हो जाता है, लेकिन मैट्रेस के अगर अंदर चला जाता है तो बहुत टाइम लगता है। तो पास्ट का जो ट्रॉमा है ना, वो बहुत लंबा चलता है कि मेरे को बचपन में मम्मी ने ऐसा बोल दिया था, पापा ने ऐसा मेरे साथ किया, भाई ने ऐसा किया, टीचर ने ऐसा किया। बहुत बार हम पास्ट को ना बहुत होल्ड ऑन करके रहते हैं, और कभी कभी तो वो इतना अंदर होता है कि वो बैकग्राउंड में चला जाता है, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में निकल के आता है कि हम रियलाइज भी नहीं करते। तो पास्ट के ट्रॉमा को, वो जो होल्ड ऑन करके रखा है हमने, उसको कैसे लेट गो करें?
3: देखिए, जो चीजें कंट्रोल में नहीं थी, अगर आप अब मैच्योर हैं तो समझे कि पेरेंट्स हम नहीं चूज कर सकते, कुछ सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ, हमने कुछ गलत देखा या झेला, ठीक है, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, हो गया। अब आप उस दर्द में सदा जीना चाहते हो या हील होना चाहते हो, वो तो आपकी चॉइस है ना। आज उस चीज के साथ क्या करना है, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, हाँ नहीं होना चाहिए था, पहले तो हुआ क्यों?
1: सही बात है,
3: पहले तो हुआ क्यों? हर एक का जो कर्म है वही किसी ना किसी रूप में लौट करके आता है, इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज जिस भी जगह पर हमारा जन्म होता है, जैसे लोग हमें मिलते हैं, जो चैलेंजेस और सिचुएशंस हमारे साथ आते हैं, है तो हर एक के ही कर्मों का हिसाब किताब। अच्छे के साथ तो हम नहीं कहते भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा क्यों किया, मुझे लूला लंगड़ा क्यों नहीं पैदा किया, मुझे अंधा बहरा क्यों नहीं पैदा किया, हम तो नहीं कहते, नहीं बोलते ना। और कभी कभी तो शुक्रिया भी नहीं करते कि इतना
1: अच्छा सब कुछ मिला,
3: अच्छा सब कुछ मिला, ठीक है, करना तो चाहिए वैसे तो, पर वो भी मिलता तो क्या है, हमारे ही श्रेष्ठ कर्म का फल है, चाहे वो अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, लविंग फैमिली है, धन का कोई अंदर में संकल्प नहीं है, सब कुछ अच्छा है, वो भी अच्छा कर्म है, पर कुछ अच्छा नहीं था आपके जीवन में, कुछ अच्छा नहीं था तो ये भी है, तो कोई हर आत्मा के अपने पूर्व का ही हिसाब किताब है, हो गया हो गया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको आगे का जीवन कैसे जीना है, आपको उस ट्रॉमा को पकड़ करके रखना है। आपकी ये तो ऐसा आप कह रहे हैं कि आज आपको पता चला कि आपको कैविटी थी, अभी वो रूट में चला गया, अब क्या करें? तो चला गया रूट में, तो रूट से भी तो निकाला जा सकता है ना। अब रूट से निकालने में आपको ज्यादा सेटिंग लगेंगे, कैविटी होती तो एक सेटिंग में हो जाता, रूट से निकालना है तो हो सकता है 6 सेटिंग भी लगे, टाइम ही तो ज्यादा लगेगा ना, निकल नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता ना। पेशेंस और मेहनत से आप हील कर सकते हैं अपने को।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लेट गो और गिव अप करने में क्या डिफरेंस है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब मुझे जानना है सिस्टर श्रेया, लेट गो के सिलसिले में जब हम बात कर रहे हैं, कई बार लेट गो का गलत मतलब भी निकाल लिया जाता है कि हम आसानी से, कुछ लोग होते हैं वो आसानी से लेट गो कर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में हम शायद गिव अप भी कर रहे हैं। लेट गो और गिव अप करने में भी एक फर्क है, राइट?
4: बहुत फर्क है,
3: और वो मुझे समझना है कि ऐसा किसी को मझधार में छोड़ना लेट गो नहीं है, वो गिव अप करना है।
4: लेट गो हम दर्द को कर रहे हैं, गिव अप हम व्यक्ति पर करते हैं।
3: हाँ, सही बात है।
4: लेट गो हम किस चीज का कर रहे हैं? हम उस दर्द का कर रहे हैं जो हमने पकड़ के रखा था। वो जो बिटरनेस का कर रहे हैं, उस रिजेंटमेंट का कर रहे हैं, उस हर्ट और एंगर का कर रहे हैं। गिव अप हम रिश्ते पर गिव अप करते थे। आई गिव अप ऑन यू, आई गिव अप ऑन यू, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता या और नहीं सहन कर सकता। तो आप गिव अप कमजोर की निशानी है, लेट गो शक्तिशाली की निशानी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पावर टू लेट गो और अपनी फेट को एक्सेप्ट करने में क्या डिफरेंस है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक किताब है जॉनपुर, किसने लिखी है, द पावर ऑफ लेटिंग गो। जब इतनी बार हो रही है तो आई थिंक ये जरूर सबको पढ़नी चाहिए। और उसमें पांच, बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और उसमें पांच जो मूल बातें हैं और वो लिखते हैं कि बी प्रेजेंट, ये बहुत जरूरी है, लेट गो ऑफ योर थॉट्स, लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में भी सोच सोच के हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। एंड लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू आर। तो आपके अंदर जो ईगो है उसको बहुत निकालना चाहिए।
4: इसलिए हमने कहा था ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। आपने कहा कि हम अपने को क्यों नहीं माफ कर सकते, क्योंकि वी डोंट लेट गो ऑफ दैट इमेज कि मैं परफेक्ट हूँ।
3: सही बात है।
4: हम बहुत डरते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, हमें बहुत अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो हमारे से गलती हो सकती है, हमारे से भूले हो सकती
3: है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Let go करने से हमारा इमोशनल पेन कैसे कम हो सकता है?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार लेट गो करने के लिए आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ता है। कि यू टेकिंग अ स्टेप बैक, यू चूज नॉट टू एंगेज, कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति डेवलप हो रही है, कोई बात नहीं, मैं स्टेप बैक ले लेता हूँ, इस सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देता हूँ, तो मैं जाने दे रहा हूँ, ये दर्द को जाने दे रहा हूँ। ये कभी कभी कुछ रिश्ते को भी जाने देना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है इस रिश्ते में मैं रहूंगा तो बहुत दर्द मिलेगा मुझे। वो कभी कभी कमजोरी की निशानी देखी जाती है।
4: हाँ, जब आप रिश्ते को जाने देते हैं तो वो तो कमजोरी की निशानी है। आप रिश्ते को क्यों जाने दे रहे हैं? क्योंकि आप अपने हर्ट को ओवरकम नहीं कर पा रहे।
3: जी,
4: तो आपको लगता है ये फिर ऐसा करेंगे
3: तो मैं इससे अच्छा निकल ही जाऊँ,
4: इससे अच्छा मैं रिश्ता ही छोड़ दूँ, तो वो वीकनेस की निशानी है। जो हमने पहले भी कहा, गिव अप करना, रिश्ते को छोड़ना, वो कमजोरी है। लेकिन शक्तिशाली जो होगा वो गिव अप, वो रिश्ते पर गिव अप नहीं करता, वो अपने को इतना स्ट्रांग बनाता है कि वो हर्ट नहीं हो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop. Before you reply to another email, एक सेकेंड अपनी लाइफ का सॉफ्टवेयर अपडेट तो कर लो यार. बिकॉज मंडे हो या थर्सडे हो, अमेरिका में कोई भी वीकडे हो, देसी प्रॉब्लम्स को हॉलीडे नहीं मिलता है. गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है. या फिर कॉफी में कैफीन, बातों में तड़का और मूड में मिर्ची रहती है. और मैं यहाँ पर फिलोसफी सुनाने नहीं आई हूँ, लेकिन तुम्हें ये बताने आई हूँ कि लाइफ में सब कुछ मिले ना मिले, अगर एक अच्छा गाना मिल जाए जो तुम्हारे मूड से मैच करता हो उस मोमेंट में, तो यार क्या ही कहने. और इसलिए मिर्चीदार बैंगर्स लेकर मैं आती हूँ तुम्हारे लिए हर रोज. अब चाहे तुम मुझे ट्रैफिक से सुन रहे हो या बेड से, चाहे तुम सबवे पकड़ रहे हो या पकड़ रहे हो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और चाहे तुम फ्रिज को तीसरी बार चेक कर रहे हो या पांचवीं बार अपना ईमेल चेक कर रहे हो, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली और मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों तक. नवरात्रि की वाइब्स भी चल रही है, जरा अपने लकी स्टार्स को रेडी रखना, बिकॉज आई हैव गॉट समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू. सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, जाकर मुझे देख भी लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. ये तुम्हें थोड़ी सी देर में बहुत काम आएगा क्योंकि मेरे पास एक कॉन्टेस्ट है तुम्हारे लिए. और साथ में व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. चलो अब जल्दी से वॉल्यूम बढ़ाओ, चेहरे पर स्माइल चढ़ाओ और सुनते रहो प्रिसिला को मिर्ची मॉर्निंग्स पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना वन रूप।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka haar. Presented by Virani Jewelers.
1: All right, the Virani Jewelers presents Mirchi no laka haar khel rahe hain hum. Main bole to Priscilla, mere saath line par hamari agli contestant hai. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's up?
2: Yeah, I'm doing good. How are you?
1: I'm great. Name?
2: Oh, my name is Sachi.
1: Hi Sachi, क्या चल रहा है?
2: बस अभी तो नवरात्रि चल रही है.
1: All right, कैसे जा रही नवरात्रि? मजा आ रहा है?
2: नहीं, यहाँ तो इंडिया मिस हो रहा है.
1: Oh, I know. फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग. लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी, अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लगता हार.
2: ओके.
1: ऑलराइट, सो सची क्विकली मुझे जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना. मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल.
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. ये सची.
2: या थैंक यू सो मच.
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो. हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की.
2: Yeah, thank you.
1: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi No Laga Haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ke abhi, and you could be the next participant in Mirchi No Laga Haar.
0: Mirchi No Laga Haar presented by Virani Jewelers.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: पिछले सात दिनों में ये सब है खोया।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: All right, my desi, stop scrolling. घर खरीदने का ड्रीम है तो ये सुनो, मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में on Mirchi Mornings.
3: Good morning, very

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर कितना कंफ्यूज्ड है, कितना नहीं पता करने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड न्यूज ये है कि सनशाइन है आज, और बैड न्यूज ये है कि कल वाली गर्मी को मिस करने का चांस मिलेगा आज। आज थर्सडे अक्टूबर 15th, टेम्परेचर रहेगा अराउंड 66 डिग्रीज फारेनहाइट तक, विद मोस्टली सनी स्काइज टर्निंग पार्टली क्लाउडी एज द डे गोज ऑन। अभी इट्स अराउंड 55 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन विंड की वजह से फील हो रहा है 52 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि आज के लिए जैकेट को रिटायर नहीं करना है। नॉर्थ ईस्ट से जेंटल ब्रीज चलने वाली अराउंड 5-10 माइल्स पर आवर। इवनिंग में टेम्परेचर 61 डिग्रीज के आसपास रहेगा और रात को गिरकर 55 डिग्रीज फारेनहाइट तक जा सकता है। क्लाउड्स बढ़ेंगे थ्रू आउट द डे, बट रेन का चांस टुनाइट इज जस्ट 10-20%। शावर्स एक्सपेक्टेड है, तो अम्ब्रेला को रेडी रखना, वरना हेयर स्टाइल गड़बड़ जाने लायक तो नहीं रहने वाली है। और अगर बाहर जा रहे हो तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड मेंटेन दैट ग्लो, वेयर योर एसपीएफ 50++++, लेयर के प्लेयर बनो, अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करो। एंड लेट मी क्विकली रिमाइंड यू, मिर्ची चल रहा है मिर्ची नौ लग का हार, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें पार्टिसिपेट करके तुम जीत सकते हो गोल्ड की चेन ऑल थ्रू नवरात्रि। तो फटाफट से नवरात्रि टाइप करो एंड अपने पूरे नाम के साथ भेजो 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244 पर। दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर, तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। यहाँ पर तुम्हें नवरात्रि लिखना है, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखकर मुझे भेजना है। इंस्टाग्राम पर MIRCHIPRIS इज माई हैंडल नेम। फटाफट से खुद को रजिस्टर कराओ एंड देन वेट फॉर माई कॉल, बिकॉज वी आर गोना प्ले अ कॉन्टेस्ट। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. Let's find out दुनिया में क्या चल रहा है. सबसे पहले इलिनॉय के अरोरा में एक हिंदू टेंपल पर अलेजेड मास शूटिंग अटेम्प्ट को पुलिस ने थ्वार्ट कर दिया है. प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक 19 ईयर ओल्ड सस्पेक्ट की गन जैम हो गई और उसके को वर्कर ने पुलिस को अलर्ट किया. सस्पेक्ट पर इंडियंस को टारगेट करने की अलेजेड इंटेंशन का आरोप है. थैंकफुली एक पोटेंशियल ट्रेजेडी को रोका गया. नंबर टू, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई एक अनयूजुअल स्टोरी. आईफोन्स और लग्जरी परफ्यूम बॉटल्स समुद्र में फ्लोट करते हुए दिखाई दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि यूएई कार्गो शिप माइन स्ट्राइक के बाद सिंक हो गया. कुछ लोग बोट्स में गुड्स कलेक्ट करते हुए दिखाई दिए. एंड लास्टली, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने 91 ईयर ओल्ड डैड सलीम खान के साथ पिक्चर्स शेयर की हैं, कॉलिंग हिम हिज रियल मॉन्स्टर. करियर हो या लाइफ हो, सुपरस्टार सलमान खान भी पापा की एडवाइस लेते हैं. एंड ही शेयर्ड दीज पिक्चर्स विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot. Bus.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहे हैं।
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
2: मेरा पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: तो मेरा
2: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेन कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेन करनी है कर दे,
3: मैं निकलवा लूंगा। ठीक है, और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
3: ठीक है भाई,
2: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: का क्या नाम है? हेलो
2: हेलो हाय
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज दीप्ति।
1: हाय दीप्ति, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
2: आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू?
1: ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हैप्पी नवरात्रि टू यू।
2: हैप्पी नवरात्रि टू यू टू।
1: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
2: गुड गुड, इट्स गोइंग ग्रेट।
1: Alright, कहाँ से हो आप इंडिया में से?
2: मैं यूपी लखनऊ।
1: अरे वाह, लखनऊ से हैं। तो लेट मी आस्क यू माई नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली।
2: या या।
1: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? विद इन सेकंड्स यू हैव टू आंसर कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल एनिमल?
2: इट्स टाइगर।
1: इट्स टाइगर, दैट्स करेक्ट। And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
0: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka haar. Presented by Virani Jewelers.
1: मॉर्निंग्स पर और नवरात्रि स्पेशल कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स और इसमें नवरात्रि की हर रात को तुमको मिल रहे हैं स्पेशल गोल्डन चांस टू विन गोल्ड का चेन एंड ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि अगले कंटेस्टेंट हमारे साथ लाइन पर है लेट्स सी कौन है हमारे साथ हेलो
2: हाय प्रिसिला दिस इज शशांक
1: हाय शशांक हाउ आर यू
2: वेरी वेरी गुड हाउ आर यू
1: I'm great. मुझे बताइए नवरात्रि कैसी जा रही है
2: बहुत अच्छी जा रही है आई एम इन छोटा सा टाउन इन इन फ्लोरिडा और यहाँ पे वी जस्ट हैड अ गरबा ऑर्गेनाइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द लास्ट थ्री और फोर इयर्स तो हम सब गए थे दिस वीकेंड एंड इट वाज सो मच फन
1: वाओ दैट्स अमेजिंग तो गरबा का सबसे फेवरेट पार्ट क्या है आपका
2: एक्चुअली सही बोलो तो खाना वहाँ पे ऑथेंटिक इंडियन खाना विद द इंडियन कम्युनिटी बस वो अलग ही मजा आता है ऑब्वियसली नवरात्रि रिलेटेड खाना रहता है लेकिन दो ताली आई एम लर्निंग न्यू स्टेप्स बाकी नए लोगों से मिलना आई थिंक इट्स मोर अबाउट द कम्युनिटी जो दैट आई रियली लाइक अबाउट द होल गरबा नवरात्रि
1: एंड आई मस्ट से कि जो हमारा कंट्री इंडिया उसके फेस्टिवल्स जो है हर एक फेस्टिवल का अपना अलग ही एक चार्म है
2: अरे बिल्कुल आई मीन इट्स कलरफुल इट्स वाइब्रेंट और एनर्जेटिक आई थिंक हमारे फेस्टिवल में एनर्जी बहुत होती है जो होली हो कि दिवाली हो एंड आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: ऑलराइट तो चलो जल्दी से मैं अपना सवाल पूछती हूँ सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट मिर्ची नौ लख का हार अभी ध्यान से सुनना है मेरा सवाल और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करना है आर यू रेडी
2: यस आई एम
1: सो मेरा सवाल शशांक आपसे ये है ध्यान से सुनिएगा व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान
2: येन येन जापानीज येन
1: जापानीज येन इज द करेक्ट आंसर
2: अरे वाह थैंक यू सो मच प्रिसिला
1: कांग्रेचुलेशंस हैप्पी नवरात्रि टू यू थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी

0: एक्टर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.

0: इधर सुन रहे हो तुम मेरे मॉर्निंग्स। मेरा नाम है ब्रिसला और आप सुनने वाले हो गोल्ड रेट अपडेट।
1: राजगोल्ड.com विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,155 $4,155 पर गोल्ड के प्राइस आज ट्रेड कर रहे हैं, जब हम आने वाले वीकेंड पे राजगोल्ड के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, पैम्प स्विस गोल्ड बार, एवरीथिंग अवेलेबल एट राजोस। इस धनतेरस दिवाली पुष्य नक्षत्र में गोल्ड में सेलिब्रेट करने के लिए आइए, इससे पहले गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएं, राजोस के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। टाइम फॉर द मिर्ची दैट बैंगर्स ओनली फॉर यू। Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Time for some updates from around the world with me, Priscilla, on Mirchi Mornings. सबसे पहले हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग में इंडिया 84th स्पॉट पर पहुंच गया है. सिंगापुर टॉप्स द लिस्ट विद वीजा फ्री एक्सेस टू 193 डेस्टिनेशंस. नंबर 2 पर कोलकाता फ्लाईओवर का मेकओवर हुआ है. चिंगरी घाटा फ्लाईओवर के रेनबो कलर्ड पेंट पर बाइकर्स के फिसलने का वीडियो सामने आया और ओवरनाइट चेंजेस किए गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं. ब्यूटी इज फाइन, लेकिन रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड लास्टली, सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और रिपोर्टेडली सिर्फ एक अकाउंट अपनी वाइफ करीना कपूर खान को फॉलो किया है. करीना ने भी इस जेस्चर पर एक वायरल पोस्ट लाइक की है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवकत्री विद मी प्रिसला. मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकत कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आया ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15, वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka haar. Presented by Virani Jewelers.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर हो रही है गोल्ड चेन की बरसात और अगर तुम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नवरात्रि टाइप करके 9033 मिर्ची पर अभी के अभी भेजो, जैसे कि हमारे अगले कंटेस्टेंट ने भेजा है। मेरा नाम है प्रिसिला और चल रहा है मिर्ची नौ लक का हार, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स, ओनली ऑन मिर्ची। लेट्स सी हमारे साथ कौन है। हेलो,
2: हाय, हेलो, दिस इज द्वानल।
1: व्हाट्स अप?
2: गुड गुड, हाउ अबाउट यू?
1: I'm great. Thank you so much for asking. Happy Navratri.
2: Same to you as well.
1: So, kya chal raha hai Navratri ki? Kya taiyariyan chal rahi hai?
2: Aarti, we have been to Garba already. It's been amazing. Navratri is one of my favorite festivals. So.
1: Yes. And ab to festival ka season hi chal raha hai. And let's see ki aaj aapka din banta hai ki nahi banta hai. Main jaldi se ek sawal puchne wali hu aapko, quickly उसका आंसर करना है, ठीक है?
2: ठीक है।
1: जीके से रिलेटेड सवाल मैं पूछने वाली हूँ आपसे। टेल मी व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड?
2: पैसिफिक ओशन।
1: पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस वनल।
2: थैंक यू।
1: आप अगले राउंड में पहुंच गए हो, बधाई हो आपको। आज आपका दिन बहुत अच्छा था, आपका लक चमक गया आज के दिन। सो
2: एब्सोल्युटली लुक्स लाइक इट, वेरी गुड। Thank you.
1: Congratulations and thank you so much for participating.
2: Thank you so much. Thank you for calling.
0: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, before you check your bank balance, let's check your Rashi ka kya kehna hai. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is yani mesh rashi, boss energy on karo, purani tension ko side rakho aur puri to-do list jo hai aaj hi khatam karne ke chakkar mein khud ko employee of the month mat bana lena. Lucky color is coral, lucky number is 9. Taurus yani rishab rashi, money matters mein practical rehna, choti details mein itna mat uljho ki apne point hi miss ho jaye. Aur koi purana dost call kare to pick up. Har unknown number spam nahi hota hai. Lucky color is sage green, lucky number is 6. Gemini yani mithun rashi, ideas ka wifi full signal par hai, new plans बनाओ, बस इम्पल्सिव डिसीजंस को एयरप्लेन मोड पर रखो. पार्टनर से बात करते वक्त सिर्फ रिप्लाई नहीं बल्कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, घर करियर और रिस्पांसिबिलिटीज सब मैनेज कर सकते हैं, बस शॉपिंग कार्ट को अपना थेरेपिस्ट मत बना लेना. थोड़ा सा मूवमेंट करो और इवनिंग में रेस्ट भी जरूरी है. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, स्पॉटलाइट इज कॉलिंग माय डार्लिंग, क्रिएटिव आइडियाज को दुनिया के सामने लाओ, अपनी टैलेंट की मार्केटिंग करो, बस बड़े बड़े फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले कैलकुलेटर को थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना. लकी कलर इज मेरी गोल्ड येलो, लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, बजट चेक कर लो बस. कॉफी, कन्वीनियंस बायज और रैंडम ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलके वॉलेट का साइलेंट ब्रेकअप करवा सकते हैं. लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 4. लीब्रो यानी तुला राशि, आज तुम्हारी पर्सनैलिटी का चार्म फुल पावर पर है, बस सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना लंच ब्रेक का बजट सैक्रिफाइस मत कर देना. रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन है, गेसिंग गेम छोड़कर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो. लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 7. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इंट्यूशन स्ट्रांग है तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, लेकिन हर बात को डिटेक्टिव केस भी मत बना देना. जो कहना है कामली कहो, इंटेंसिटी का वॉल्यूम थोड़ा सा कंट्रोल में रखो. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, कॉन्फिडेंस हाई है, पॉसिबिलिटीज वाइड है, किसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आस्क करना है तो प्रेपरेशन के साथ साथ आगे बढ़ो. बस कैलेंडर में इतने कमिटमेंट्स मत भर देना कि खुद से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़े. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 3. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, फ्यूचर प्लानिंग का मूड है परफेक्ट, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो और पास्ट की टेंशन को प्रेजेंट का लैंडलॉर्ड मत बनने दो. रिलेशनशिप्स में ग्रैंड जेस्चर्स से ज्यादा स्मॉल काइंडनेस काम आने वाली है. लकी कलर इज ब्लैक, लकी नंबर इज 10. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, न्यू आइडियाज, न्यू कनेक्शंस, न्यू पॉसिबिलिटीज, वर्क पार्टनरशिप्स को स्ट्रांग करो और बजट को भी मीटिंग में बुलाओ. घर वालों से अपनी बात को क्लियरली शेयर करो, दे मे बी मोर सपोर्टिव देन यू थिंक. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक वायलेट, लकी नंबर इज 11. पाइसिस यानी कि मीन राशि, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन दोनों का कॉम्बो रेडी है. दिल से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटी को

शेजोद, मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में. स्टे विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ओए होए मेरे देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। लेकिन अब शो खत्म हो रहा है और मेरी तरफ से तुम्हारी किस्मत का एंटरटेनमेंट जो है वो भी बाकी है। अब तुम पूछो कि कैसे। टाटा बाय बाय कहने से पहले एंड बिफोर आई गो तुम्हें याद दिला दूं कि मिर्ची के साथ कुछ लकी विनर्स को मिल रही है गोल्ड चेन्स। यस, नवरात्रि के पूरे सीजन में लकी चेन्स जीत सकते हो तुम कर्सी वीरानी ज्वेलर्स, क्योंकि मिर्ची पर चल रहा है 9 लाख का हार ब्रॉट यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। 9 नवरात्रि नाइट्स है और तुम्हारे चांसेस काफी ब्राइट हैं जीतने के गोल्ड की चेन। पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है। पहला काम ये करो कि व्हाट्सएप खोलो, नवरात्रि टाइप करो, अपना पूरा नाम लिखकर भेजो 9033647244 पर, या फिर तुम इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे डीएम कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। यहाँ पर लिखो नवरात्रि, अपना पूरा नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखकर मुझे भेज दो। फटाफट से अपने आप को रजिस्टर करो एंड ओक ट्री रोड पर वीरानी ज्वेलर्स के फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स भी जाकर चेकआउट करो। 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर वहां पर ढेर सारे फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, या फिर ऑनलाइन विजिट करो veeraniejewelers.com पर। अभी फिलहाल मेरे जाने का टाइम है, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फन, खाओ पियो ऐश करो, और मुझे मिस करोगे तो कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया। एंड अभी मिर्ची सुनते रहो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हेलो हेलो वेलकम। ये वो टाइम होता है जब आप और मैं मिल बैठते हैं और उस ज़माने के गानों को, उस ज़माने की बातों को एंजॉय करते हैं। सो आ गई आपकी प्यारी श्रेया और आज मैं एक हॉरर फिल्म लेकर के आई हूँ। अब आप इसको हॉरर फिल्म भी कह सकते हो, मिस्ट्री फिल्म भी कह सकते हो। यू नो एट दैट टाइम हॉरर और मिस्ट्री को बहुत अलग अलग नहीं देखा जाता था। थोड़ा सा हॉरर में मिस्ट्री होती थी और थोड़ी सी मिस्ट्री में हॉरर होता था। लेकिन एक बड़ी खास बात है इस फिल्म की। वेल दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जो कि डैनी ने, हाँ जी द एक्टर डैनी ने डायरेक्ट की थी। ये उनकी पहली और आखिरी डायरेक्टेड फिल्म थी। इसमें थे राजेश खन्ना और किम और इसमें थी अरुणा ईरानी। वेल ये किस फिल्म की बात कर रही हूँ, मूवी का नाम है फिर वही रात। 1980 की ये फिल्म है। आपको ना आज उसके बारे में बताऊंगी। कम राइट बैक, मिल करके गप्पे लड़ाएंगे इसी फिल्म के बारे में। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो,
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा।
3: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहा है।
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
2: पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: है तो मेरा यूरिन
2: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
3: मैं निकलवा लूंगा।
2: ठीक है,
3: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है जाके।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है, देख ले देख ले।
3: ठीक है भाई,
2: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो एक्चुअली में आपकी मदद करने के लिए तैयार हों और उनके अंदर वो कैपेसिटी भी हो टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। आई मीन, वैसे तो सारी दुनिया आकर के ज्ञान दे देती है, लेकिन ऐसे बहुत कम दोस्त हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में थी किम। किम का ये डेब्यू फिल्म थी, राजेश खन्ना, अरुणा ईरानी। फिल्म वॉज मिस्टीरियस, फिल्म वॉज हॉरर फिल्म, थोड़ी सी हॉरर थी, ज़्यादा नहीं थी। इस फिल्म में डैनी जी ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म जिससे उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया एंड ख़त्म भी कर दिया। मतलब इस फिल्म के बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम नहीं रखा। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि डैनी जी जो थे ना, वो सेम काइंड ऑफ रोल्स कर करके थक गए थे। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी साहब, वो डैनी जी के बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो एक बार डैनी जी ने ना उनसे बस ऐसे ही शेयर किया कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मुझे ना एक्टिंग में मज़ा नहीं आ रही है। तो एनएन सिप्पी जनरली कोशिश करते थे कि उनकी फिल्में नए डायरेक्टर्स यू नो डायरेक्ट करें। ही यूज टू गिव चांसेस टू न्यू डायरेक्टर्स। और जब ये बात उनके खुद के दोस्त ने कह दी तो फिर कैसे नहीं हो। तो ये जो फिल्म है फिर वही रात, ये डैनी जी ने डायरेक्ट की है, एंड दिस रिमेन्स द ओनली फिल्म दैट हीज डायरेक्टेड। लेकिन ये करने का मौका उनको किसने दिया? उनके दोस्त एनएन सिप्पी ने। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें। कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यंग टैलेंट को एक चांस देने में बिलीव करते थे प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ, फिर चाहे वो एक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स हो। सो डायरेक्टर्स तो उन्होंने कई सारे नए नए बनाए, जैसे कि सुभाष वाही, जैसे कि अशोक रॉय, सीपी दीक्षित। एंड जब बात हुई डैनी जी की, तो उनके साथ तो ऑलरेडी वो दो फिल्मों में काम कर चुके थे, वन वाज चोर मचाए शोर एंड द अदर वन वाज फकीरा। इन दोनों में उन्होंने डैनी के साथ काम किया था, मतलब ही वाज अ प्रोड्यूसर एंड डैनी जी ऑफ कोर्स फिल्म में थे। इसी के दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और डैनी ने बस ऐसे ही कहा कि मैं अब सेम तरीके के वही रोल कर करके थक गया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ना एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। ऐसे में सिप्पी साहब ने कहा, अरे क्यों नहीं,

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर इस फिल्म में होने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने कहा ना ना ना, काका यानी राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा है आजकल बॉलीवुड में, यानी बड़े पर्दे पे उनको लो। तो फिर क्या हुआ, इस हॉरर फिल्म में आ गए शशि कपूर की जगह राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फिर वही रात। ये फिल्म में थे काका राजेश खन्ना अलोंग विथ किम, और किम का ना ये डेब्यू फिल्म थी। वेल, पहले इसमें शशि कपूर होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, स्पेशली प्रोड्यूसर्स होते थे, वो ना मार्केट रिसर्च पूरी करके आते थे कि कौन सा एक्टर चल रहा है, किस पे पैसा लगाना है, और उनका बहुत से होता था इन द कास्ट ऑफ द फिल्म। सो इस फिल्म में भी भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें काका आए यानी राजेश खन्ना आए, नॉट शम्मी कपूर साहब। वेल, फिर क्या था, डैनी जी की ये ओनली डायरेक्टेड फिल्म थी, और उन्होंने काका जो कि उनके दोस्त थे, मतलब हल्के फुल्के वाले दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, उनको पूछा एंड काका ग्रेट। दिस इज हाउ दिस हॉरर फिल्म वॉज मेड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

0: नहीं अरमान।
1: लेकिन इस फिल्म के बाद से दोस्ती खत्म हो गई। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है। 15th अगस्त 1980 को इसको रिलीज किया गया था। राजेश खन्ना थे इसमें, किम थी, एंड दिस वाज़ दी ओनली फिल्म जो डैनी जी ने डायरेक्ट की थी। ये फिल्म पे पैसा लगाने वाले यानी प्रोड्यूसर थे NN सिप्पी साहब, जो कि नए डायरेक्टर्स को चांस देते थे, और इस बार उन्होंने चांस दिया था अपने दोस्त डैनी को। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये बात ने एक दरार पैदा कर दी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कि फ्रेंड्स हुआ करते थे यानी सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में। वेल, डैनी जी ने तो ये तक कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त नहीं होता, सब एसोसिएट्स होते हैं। लेकिन फिर एक बार और दोनों ने एक साथ काम किया, वो कितने साल बाद था और क्यों किया, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: हेलो।
1: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकत कर रहा है?
0: हेलो
1: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब। मैं हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
0: तुम कौन हो?
1: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
0: क्यों आ जाऊं?
1: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
0: तुम्हें बात करनी है?
1: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
0: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
1: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
0: अरे किसका अंकल?
1: बेटा तुम्हारा अंकल।
0: ये कब आ गया?
1: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
0: हेलो
1: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
0: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
1: वही लेवल 7।
0: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
1: अग्रेशन।
0: कौन हो तुम मेरे?
1: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
0: अरे तू है कौन, तू ये बता।
1: ना ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आया ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
0: ऐसा है अपनी गोली डाल दो अपनी में, ठीक है?
1: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना फिर।
0: ऐसा है इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
1: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

12 साल लग गए इस दोस्ती को वापस जमने में, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, पर मुझे समझ नहीं आया कि कैसी दोस्ती हो सकती है। आई मीन इमेजिन, तुम अपने दोस्त को कोई काम देते हो, कोई ड्यूटी देते हो, ओके, और उसमें उस ड्यूटी में माना कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, पर तुमने उसको ट्रस्ट किया ना, इसलिए उसे दिया। अब उस ड्यूटी में अनइंटेंशनली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है, जिसमें उस बंदे का, तुम्हारे दोस्त का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो खराब हो, लेकिन नहीं होती है, लोगों को नहीं पसंद आता है, तो क्या आप अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे? अब ऐसे ही कुछ हुआ था सिप्पी साहब के बीच में और डैनी जी के बीच में, फिर वही रात जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, इस मूवी की 1980 में ये फिल्म आई थी, एंड ये डैनी जी की इकलौती डायरेक्टेड फिल्म थी। डैनी जी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, वो सेम रोल्स कर करके एकदम बोर हो चुके थे। एट दैट टाइम सिप्पी साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सिप्पी साहब वैसे भी नए डायरेक्टर्स को मौका दिया करते थे, तो उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट आई है मेरे पास, इस फिल्म को तुम डायरेक्ट कर लो। Now what happened was that this film actually flopped at the box office. 15th August 1980 पे ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, जबकि इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड किम। अब इसका पूरा ठिकरा जो है वो सिप्पी साहब ने डाल दिया भाई डैनी जी के ऊपर, कि उनको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना पाता। ऑल ऑफ दैट दोनों दोस्तों ने एक्चुअली में 18 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करी, एंड आफ्टर 18 ईयर्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यू नो एक पिटारे में डाला और उसको बंद किया, एंड दे वर्क टुगेदर इन द फिल्म कॉल्ड सिलसिला है प्यार का। लेकिन इसमें 18 साल लग गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती नहीं होती। आप अपने दोस्त से नाराज कितने दिन, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तो जाके उसे झप्पी पा ही लेते हो, है ना? पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डैनी जी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो बहुत बहुत नर्वस थे, एक्सट्रीमली नर्वस थे जब वो अपनी पहली और आखिरी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। वो फिल्म जिसके बारे में आज बात हो रही है, मूवी का नाम है फिर वही रात, 1980 की ये फिल्म, और इसमें थे राजेश खन्ना। अच्छा, डैनी जी ने कहा कि क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। ही सेड कि मैं दोनों में से एक काम कर सकता था, पर क्योंकि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब, जिन्होंने ये फिल्म उनको दी थी, वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, तो उनको डुअल काम करना पड़ गया। और क्योंकि वो डायरेक्शन में पहली बार उतरे थे, तो वो उन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाए। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की बातें चलेंगी। वेल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था दी एक्ट्रेस किम ने, पर उनको इंट्रोड्यूस किसने किया था ये अभी आपको बताऊंगी। कहानी बहुत मजेदार है। कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची इट्स हॉट।

0: रहा है।
1: किम हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका डेब्यू ऑपोजिट राजेश खन्ना होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शशि कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को किम से, और एनएन सिप्पी एक्चुअली लाइक्ड हर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना है, मैं आपको उनके ऑपोजिट उतारूंगा। ये फिल्म थी फिर वही रात, जिसकी आज बात हो रही है, जो कि डायरेक्ट की थी डैनी जी ने। किम फिर मिली डैनी से इन द फिल्म कॉल्ड चोर मचाए शोर उनके सेट पर, एंड डैनी जी क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे फिर वही रात, दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई तो किम एक्चुअली ब्लेम्ड हरसेल्फ। शी सेड कि वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाई, उनकी पहली फिल्म थी एंड उनकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई। लेकिन ये बात सिप्पी साहब ने एकदम एक सिरे से नकार दी। ही सेड कि हम आपके साथ फिर से काम करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ यू द फिल्म फ्लॉप। बट इमेजिन वॉट, शी नेवर गॉट रिपीटेड इन एनी ऑफ द एनएन सिप्पीज़ फिल्म अगेन। पुरानी जीन्स पे आज फिर वही रात की बातें हो रही है। अभी गाना भी सुनाऊंगी, कम राइट बैक। मतलब मैं नहीं सुनाऊंगी, इस फिल्म का गाना सुनाऊंगी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो इस रोल के लिए वोटिंग हुई थी पुरानी जीन्स पे अपुश्रेया के साथ। एक कैंडिडेट थे जीतू जी जितेंद्र जी और दूसरे कैंडिडेट थे काका यानी राजेश खन्ना। वेल आज बात हो रही फिल्म फिर वही रात। वेल इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे डैनी जी और ये उनकी इकलौती डायरेक्टेड फिल्म बन के रह गई। इस फिल्म में पैसा लगाने वाले यानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी साहब। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि सिप्पी साहब चाहते थे कि जीतू जी इस फिल्म में आए, लेकिन डैनी जी ने कहा कि जीतू जी ना फिल्म के रोल के लिए मैच्योर नहीं दिखते, वो चाहते थे कि काका इस रोल में आए। अब काका का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उस टाइम पे एकदम फ्लॉप चल रहा था, सो दोनों के बीच में थोड़ी जय हुई डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑफिस के स्टाफ से वोट कराते हैं। एक्चुअली में जितना वहाँ पे कास्ट एंड क्रू था ऑफिस का, सबने वोट किया। दे हैड टू वोट अमंगस्ट जीतू जी एंड राजेश जी। एंड सोचो किसने जीता? ऑफ कोर्स इट वाज राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि टेस्ट कैसे करते हैं ये?
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: नहीं तो मेरा
1: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है कर दे,
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसा।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले,
2: ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ये पगला
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक्ट्रेस किम के फादर ने ना उनको एक वार्निंग दे रखी थी, एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा डेब्यू हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज इंडस्ट्री चेंज करना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है फिर वही रात। 1980 की फिल्म है, 15 अगस्त 1980 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना एंड किम थी इसमें, किम जिन्होंने अपना डेब्यू किया था इस फिल्म से, एक और जने हैं जिन्होंने इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, दैट वाज डैनी। सो किम के फादर ने ना उनको ये वार्निंग दे रखी थी कि 6 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई अच्छी फिल्म मिल गई तो फिर करना, अदरवाइज अगर 6 महीने क्रॉस कर जाते हैं यू स्टिल डू नॉट हैव अ गुड फिल्म इन योर यू नो इन योर लिस्ट, तो फिर आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। ये बात किम ने बताई थी अपने दोस्त शशि कपूर को। शशि कपूर उनको ले गए NN सिप्पी साहब के पास, और सिप्पी साहब डैनी जी के पास जो कि फिल्म बना रहे थे फिर वही रात। सो सिप्पी साहब ने शशि कपूर से प्रॉमिस किया था कि उनके दोस्त के लिए वो एक अच्छा लॉन्च प्लान करेंगे। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी लॉन्च्ड right opposite none other than kaka yani Rajesh Khanna. Purani jeans pe main hu Shreya, come right back.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना।

भाई उस जमाने में सोशल मीडिया पे भले ही ट्रोलिंग ना हो लेकिन फिल्मी मैगजीन्स कम नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड किम, उनकी ये डेब्यू फिल्म थी जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ। इंडिया की हॉरर फिल्म जिसका नाम था फिर वही रात। इट वॉज डायरेक्टेड बाय डैनी जी एंड इसमें मेन लीड में थे राजेश खन्ना और उनके ऑपोजिट मैदान में पहली बार उतरी थी दी एक्ट्रेस किम। सो उनके लुक्स को लेकर के रादर उनके एक्सप्रेशंस को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनको मिला था। फिल्मी मैगजीन्स ने लिखा था, फिल्मी पंडित्स ने बोला था एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ तो इंडस्ट्री में बहुत स्प्रेड हो गया था दैट शी इज एक्सप्रेशनलेस। लेकिन जब किम ने इंटरव्यू दिया एक मैगजीन को तो उन्होंने कहा कि उनके डायरेक्टर डैनी चाहते थे कि उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ऐसे रहें, एकदम डेड पैन की तरह रहें। सो शी डिड व्हाट द डायरेक्टर आस्क्ड। अब भाई दोनों में कौन सही था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस फिल्म के बाद किम जी को काफी मशक्कत करनी पड़ी टू गेट अनदर फिल्म इन हर किटी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ फिर वही रात, इसकी बातें चलती रहेंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पुरानी जीन्स पे हाफ श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी लेट्स हिट द हाईवे। वेल, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का हाईवे हिट आप मुझे डेडिकेट करना चाहते हो, क्योंकि वो है रवि साहब की आवाज है। मुझे जाने दो, अगर अभी नहीं गई तो कल मिलने फिर कैसे आऊंगी। बट यस, इन केस अगर आपको मुझसे बात करनी है, वन टू वन कॉन्वर्सेशन करना है, जहाँ आप भी मुझसे कुछ बोल सकते हो, रेडियो पे तो सिर्फ मैं ही चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। सो फॉर दैट, फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव। ऑन दैट नॉट, गुड नाइट।

0: बेटाओं की कहानियों का कैमरा धीरे धीरे यूपी बिहार की तरफ बढ़ रहा है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: पहले एक वक्त था जब बॉलीवुड की कहानियों का सेंटर हुआ करता था मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहर, लेकिन अब कहानियों का कैमरा धीरे धीरे यूपी और बिहार की गलियों, कस्बों और छोटे शहरों की तरफ भी मुड़ रहा है, क्योंकि भाई असली इंडिया की कहानियां सिर्फ मेट्रोज में नहीं मिलती, इन्हीं गलियों में बसी होती हैं। और अब देखो, यूपी बिहार सिर्फ फिल्म मेकर्स को स्टोरीज ही नहीं दे रहे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी भी बन रहे हैं। यहाँ की बोली, लोकल ह्यूमर, पॉलिटिकल अंडरटोन्स और स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ सिनेमा के लिए एक रिच कैनवस है। गैंग्स ऑफ वसीपुर से लेकर लापता लेडीज तक, जमतारा से लेकर मिर्जापुर तक, स्मॉल टाउन इंडिया ने दिखाया है कि वहाँ की स्टोरीज में कितनी वैरायटी और दम है। इनफैक्ट इसी रीजनल कनेक्ट में स्पिरिचुअलिटी और लोकल कल्चर भी प्रमोशनल स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म द वन आई थी, जिसमें छठ पूजा को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब यामी गौतम की अपकमिंग फैंटेसी फिल्म नई नवेली, जो 16th ऑफ अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, उसके प्रमोशंस फुल स्विंग में है। इनफैक्ट बनारस की राम की पैड़ी पर इस फिल्म के डिवोशनल ट्रैक अवधिया के राजा की लाइव परफॉर्मेंस भी इसी कल्चरल कनेक्ट को हाईलाइट करती है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, बॉलीवुड को अब समझ आ रहा है कि कहानी चाहे बनारस की गलियों से निकले या बिहार के किसी कस्बे से, अगर उसमें अपनापन है तो वो पूरे देश के दिल तक पहुंच सकती है। Well, what are your opinions about that? मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके मुझे जरूर बताना। Till then, enjoy the upcoming songs right here on Mirchi. It's all.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na virtuala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैं क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना इसे, ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये level 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, level 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

और विशाल जेठवा जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। बाकी इसका बैकड्रॉप होने वाला है ड्रग माफिया और सनी बन रहे हैं एक इनकरप्टेबल पुलिस ऑफिसर। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग टू ऑन स्क्रीन डेब्यू, सो डायरेक्टर इम्तियाज अली और प्रोड्यूसर महावीर जैन कुछ फ्रेश फेसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी अपकमिंग फ्रेंडशिप कॉमेडी साइड हीरोज के लिए। एंड वन सच फेस हैज बीन फाइनलाइज्ड, ये हैं हीर जो एक प्लेबैक सिंगर है। इन्होंने बटवारा, 1947 एंड पैदी जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। एंड रिपोर्ट्स हैव इट दैट इनका बॉलीवुड डेब्यू होने वाला है साइड हीरोज के साथ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार अभी भी कर रहे हैं हम, कन्फर्म होते ही आपको जरूर बताऊंगी। अनुपम खेर एज जटायु, नहीं वो एक्ट नहीं कर रहे हैं भाई, जटायु को एनिमेटेड बनाया गया है ना इन अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण पार्ट वन। सो जटायु का किरदार जो है उसकी आवाज दी है नन अदर देन द लेजेंडरी अनुपम खेर सर ने। बाकी द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 5th of November, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

सुस्तियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलू मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उन्हें नवा वर्ष से पहले की आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े। मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो भाई ड्रिल ये होता है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: आपकी बात हो रही है नवनील से।
0: ओ माय गॉड दैट स्टाइल, आई लाइक इट, क्लॉक इट। अच्छा अब ये एक बात बताओ, गेम खेलने के लिए तैयार हो आप?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, जजंतरम ममंतरम के लीड एक्टर कौन है?
3: जावेद जाफरी।
0: क्या बात है, जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल धमाल धमाल धमाल।
0: धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का तो करने का?
3: मुन्ना भाई MBBS।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: तो मुन्ना भाई को, संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
3: माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
3: जिसमें रणवीर था, ये जवानी है दीवानी।
0: बहुत बढ़िया, ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
3: कल्की को प्यार होता है।
0: यस, कल्की की किस फिल्म में

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
3: Yeah. Mirchi, Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Mirchi, Mirchi. Aha.
4: खेलो मगर प्यार से।
5: श्रुति श्रुति
6: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
4: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म की गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाए, और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थे नवनील, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं विशाल। तो शुरू करें?
7: जरूर करूंगा।
4: ऑल राइट, तो जिस सवाल पे नवनील अटके थे वॉज कभी खुशी कभी गम में कह दिया तो कह दिया, ये कौन बोलता है?
7: अमिताभ बच्चन।
4: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सरू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
7: शाहरुख खान वाली मूवी है वो, एक सेकंड में। मोहब्बते
4: में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
7: मोहब्बते में किस? ऐश्वर्या राय।
4: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो एक हॉट शायरा बनी है?
7: ए दिल है मुश्किल
4: में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
7: रणबीर कपूर।
4: रणबीर कपूर किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
7: ओके, ये तो अभी मूवी आई थी, मैं अनिल कपूर।
4: हाँ।
7: एनिमल पापा मेरी जान।
4: एनिमल में अबरार कौन है?
7: अबरार है हमारा बॉबी भाई।
4: बॉबी

0: Milci. Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर. लेकिन सिचुएशन है.
1: आसपास कोई भी नहीं है.
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है.
1: हरा काट के देख.
2: धीरे से. 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा
2: है.
1: हाँ.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: कहानियाँ ऐसी जो सालों बाद भी रेलिवेंट हो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो टाइम एंड अगेन वहाँ से हमें ऐसी फिल्में मिली हैं जो आज से 10-20 साल बाद भी आप देखेंगे तो टॉपिक काफी रेलिवेंट लगेगा। और आज वैसी ही कुछ कल्ट क्लासिक्स की बात कर रही हूँ अपने पांच का पंच की लिस्ट में, जिसमें सबसे पहले हमने जाने भी दो यारों को डिस्कस कर लिया। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कागज के फूल। ये फिल्म आई थी इन द ईयर 1959, डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त, जो एक फिल्म डायरेक्टर के राइज एंड फॉल को एक्सप्लोर करती है विद इन द इंडस्ट्री। ऑल्दो ये मूवी रिलीज के टाइम एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स नैरेटिव जो है वो लोगों को काफी ज्यादा सोफेस्टिकेटेड लगा था। इनफैक्ट फिल्म के परफॉर्मेंस से इनिशियली गुरुदत्त इस तरीके से परेशान हुए थे दैट उन्होंने ऑफिशियली डिसाइड किया कि वो कभी भी डायरेक्शन नहीं करेंगे। बट आज देखिए इस फिल्म के इनोवेटिव टेक्निक्स एंड प्रोफाउंड थीम्स इसको लीक से हटके बनाते हैं। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर के बारे में, जो 1970 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राज कपूर साहब, जिसमें वो खुद लीड रोल निभा रहे थे। सो ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 घंटे 15 मिनट के रन टाइम के साथ विद 2 इंटरमिशंस। हाँ, और जब ये आई तो फिर राज कपूर स्टूडियोज डेप में चले गए, क्योंकि इट हैपन टू बी अ डिजास्टर। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी 1988 में राज कपूर साहब के डेथ के बाद ये फिल्म एक बार फिर से रिलीज की गई, विच हैपन टू बी एन इंस्टेंट हिट। तो बाबू मोशाय, बॉक्स ऑफिस किसी फिल्म की डेस्टिनी कभी डिसाइड नहीं करती। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बॉक्स ऑफिस किसी फिल्म की डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं हमें जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट लेटर ऑन उन मूवीज को कल्ट क्लासिक का दर्जा जरूर दिया गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट जाने भी दो यारो, नंबर दो पे कागज के फूल, नंबर तीन पे मेरा नाम जोकर, और अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अक्टूबर जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2018, डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। ये एक अंडरस्टेटेड ड्रामा थी जो अनकंडीशनल लव को टिपिकल रिलेशनशिप्स के बियॉन्ड एक्सप्लोर करती नजर आई। फिल्म की स्टैटिक पेसिंग हो, उसकी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग हो, ये सारी चीजें एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्सपेक्टेशंस को तोड़ती हैं। एंड दिस इज वाई ऑडियंस को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। चलिए मूविंग ऑन नंबर पांच पे, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म ओए लकी लकी ओए। हां जी, ये मूवी आई थी इन द ईयर 2008, डायरेक्टेड बाय दिबाकर बैनर्जी, जिसमें अभय देओल, परेश रावल, नीतू चंद्रा और ऋचा चड्ढा जैसे एक्टर्स थे। सो ये एक क्राइम कॉमेडी है जिसमें अभय देओल एक एंटी हीरो का रोल निभाते हैं जो एक दिल्ली के मिडिल क्लास जिंदगी से आता है। बाकी ये मूवी नहीं चलने का एक मेजर रीजन था कि 26/11 मुंबई अटैक्स के दो दिनों के बाद ही ये रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इट डिडंट रिसीव मच आईबॉल्स। बट आज इस फिल्म के मिडिल क्लास नुआंस नैरेटिव्स जो हैं, वो इसको कल्ट क्लासिक का दर्जा देते हैं। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई ऐसी ही फिल्म ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट। उसके लिए मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करो। एंड मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग साईफाई एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म समुक में एक नई एंट्री हुई है। नाम है इनका बनिता संधु। हां जी, इन एक्ट्रेस को हमने अक्टूबर, सरदार उधम सिंह, मैं वापस आऊंगा और इंटरनेशनल सीरीज ब्रिजर्टन में भी देखा है। सो कनिक वर्मा डायरेक्टोरियल इस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म सामुक में बनीता का किरदार एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट का होने वाला है, जिसके बारे में बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। धुरंधर द रिवेंज का टीवी प्रीमियर होने वाला है, हां जी, और ये होगा स्टार गोल्ड पे फ्रॉम द 18th ऑफ अक्टूबर। आपको बता दूं कि टीवी लायक बनाने के लिए इस मूवी से बहुत सारे गोर विजुअल्स को हटाया गया है, जिसकी वजह से इस फिल्म के ओरिजिनल रन टाइम में भी कमी आई है। 70 दिन, बस 70 दिन है तुम्हारे पास। सो शाहरुख खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म किंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि 70 दिनों में इसका रिलीज होने वाला है ना, विच इज क्रिसमस ईव। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट शाहरुख खान का बर्थडे इज राउंड द कॉर्नर, यानी 2nd of November को, और इसी दिन सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टोरियल इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जाएगा। मतलब बर्थडे होगा इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान का, लेकिन गिफ्ट मिलेगा हमें एज एन ऑडियंस। वैसे पता ना हो तो बता दूं, इस फिल्म में करीना कपूर खान का भी एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है, बट फॉर अ डांस नंबर विद शाहरुख खान, और इसका नाम है डैडी कूल। वेल, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन यार। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। यार जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्सडे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो चुका होता है पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rámbala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब। मैं हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा है ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

बॉलीवुड कैरेक्टर्स से ना लोगों की पर्सनालिटी पता चलती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और किसी को ना गीत की एनर्जी पसंद है, तो किसी को बनी का एडवेंचर, तो किसी को पू का एटीट्यूड। तो आज ना एक स्नैक पर्सनालिटी टेस्ट भी कर ही लेते हैं। मतलब अगर आपको चीज़ें सिंपल और क्लासिक पसंद है तो यू आर प्रोबेबली नेचुरल। थोड़ा शार्प सोफिस्टिकेटेड एटीट्यूड है तो ब्लैक पेपर। और अगर लाइफ में थोड़ा ड्रामा, थोड़ी हीट और थोड़ा ब्रिंग इट ऑन चाहिए तो रेड चिली गैंग आई कैन सी यू। मतलब मूवी चल रही हो, फ्रेंड्स के साथ बॉलीवुड गॉसिप हो, या जर्सी की ड्राइव थोड़ी लंबी, एक क्रंची स्नैक का पैकेट खुलता है और हाथ ऑटोमेटिकली उसमें वापस चलना ही जाता है। और इन तीनों मूड्स के लिए दीप चिप्स, नेचुरल ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेवर्स, यानी अपना कैरेक्टर चूज कीजिए एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट तो कंप्लीट हो गई, अब देखते हैं अगला बॉलीवुड गाना आपके कैरेक्टर से मैच करता है या नहीं। ऑन योर मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का एक ऐसा काउच जहाँ बैठने के बाद सेलिब्रिटीज को अपने आंसर से ज्यादा अपने एक्सप्रेशन संभालने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं वो देखकर क्या हो जाए उनके साथ। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है कॉफी विद करण की, जिसका अगला सीजन 9 आने वाला है। और कहाँ जा रहा है कि ये तो फाइनल सीजन होने वाला है। वैसे मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि यार इतने सालों से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस काउच पर आ रहे हैं। नॉट जस्ट बॉलीवुड, बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट सेलिब्रिटीज, एंड ऐसे सारे एपिसोड्स तो धमाकेदार रहे ही है। तो कभी रैपिड फायर में कुछ फनी आंसर्स, तो कभी अनएक्सपेक्टेड कन्फेशंस, कभी फ्रेंडशिप की केमिस्ट्री, तो कभी एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो यार अगले दिन पूरे इंटरनेट की हेडलाइन ही बन जाता था। लेकिन मुझे इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगती है कि उसका जो रैपिड फायर राउंड होता था, ओ हो, कोई भी बड़ी सीरियल जो आती थी ना जिसमें एकदम कलेश होता था, उससे ज़्यादा कलेश उस रैपिड फायर राउंड में होता था। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए सेलिब्रिटीज़ को बहुत ही कम सेकंड्स मिलते थे, और कुछ बहुत ही खतरनाक जवाब बाहर आते थे। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप भी करण जौहर के उसी काउच पे हो, और वो पूछते हैं वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी यू वुड लव टू हैव कॉफी विद, तो आपका जवाब क्या होगा मुझे ज़रूर बताना। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कॉफी के साथ द बॉलीवुड गॉसिप तो हो गई, तो चलिए बॉलीवुड म्यूजिक की बारी। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: हैप्पी नवरात्रि न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों देखिए, नवरात्रि की यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां हमारी शुरू तो हो ही चुकी है, उसी के साथ साथ आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार नवरात्रि इज वेरी स्पेशल विद मिर्ची 9 लाख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स, यानी लकी विनर्स जीतेंगे गोल्ड चेन। तो देखते हैं आज कौन ऐसे लकी पार्टिसिपेंट है जिनके हाथ आ सकता है गोल्ड चेन। तो चलिए, मेरे साथ है आज कॉल पर अतुल अहुजा। हेलो अतुल।
2: Hey Siddhi, how are you?
1: I'm doing good, how are you?
2: Very good, thanks.
1: तो अतुल, क्या आप सोने की चेन जीतने के लिए तैयार हो?
2: हाँ, बिल्कुल
1: बिल्कुल। तो चलिए, आपके लिए जो सवाल है मेरे पास, बहुत ही आसान सा सवाल है कि अपने जो नवरात्रि है ना, उसमें इतने सारे गाने हैं, उसका एक बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है नगाड़े संग ढोल बाजे, इसकी जो ओरिजिनल सिंगर है वो कौन है?
2: इसकी ओरिजिनल सिंगर, ओके, लेट मी गेस, ये गुजराती एक सिंगर है, मैं नाम ट्राई कर रहा हूँ याद करने का।
1: गुजराती सिंगर?
2: हाँ, ये आई थिंक कोई इंटरनेशनल में भी आई थी, बट आई थिंक उसके बाद ओरिजिनल सॉन्ग श्रेया घोषाल ने इसको रिकॉर्ड किया था।
1: आप गुजराती सिंगर से इंडियन आइडल से श्रेया घोषाल पे गए हो, देखिए आपको ये गाना फिर से सुनना पड़ेगा आफ्टर दिस, बट श्रेया घोषाल इज राइट। तो जी हाँ, श्रेया घोषाल का गाना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ श्रेया घोषाल। तो इसके बाद मैं आपके लिए यही गाना बजाने वाली हूँ, आप अच्छे से सुनना। यस, दैट इज श्रेया घोषाल, में आपका गेस भी सही था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए, एंड मैं आपको बोलूंगी इस बार जब आप फाइनल राउंड के लिए आओगे तो सारे गाने एक बार अच्छे से सुन के आना रेडियो पर ही।
2: बिल्कुल सुन के आऊंगा।
1: चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन अतुल। और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची 9 लाख का हार, तो जल्दी से टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi, और अपनी नवरात्रि की शॉपिंग कीजिए विरानी ज्वेलर्स के स्टोर पर ऑन ओकरी रोड इजलिन न्यू जर्सी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।
3: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा, बजा।

वैसे तो फोन में हजारों रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन बचपन के कुछ बर्थडेज ना आज भी बिना नोटिफिकेशन के याद रहते हैं। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज है थ्रो बैक थर्सडे। और याद आ रहा है वो बचपन वाला दोस्त जिसके बर्थडे की डेट ना आज भी दिल को याद है। तब तो ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम रिमाइंडर, ना गूगल कैलेंडर। बस याद रहता था कि किस दिन स्कूल में टॉफी मिलने वाली है, उसके घर जाना, बलून्स फोड़ना, और रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा उसकी एक्साइटमेंट ही अलग होती थी। और शायद इसीलिए ना बचपन के जो बर्थडेज होते थे सिर्फ कैलेंडर की डेट्स नहीं थे, वो पूरे इवेंट्स हुआ करते थे। क्योंकि आज लाइफ चाहे कितनी भी बिजी हो गई हो, मतलब ये सारे मीटिंग्स के रिमाइंडर्स याद रखने पड़ते हैं, लेकिन वो एक दोस्त का बर्थडे और उसके घर की वो केक की स्मेल, ओ हो, आज भी मेमोरी से डिलीट नहीं होती। तो आज थ्रोबैक थर्सडे पे एक छोटा सा काम कीजिए, अगर वो दोस्त आज भी टच में है तो बिना किसी रीजन के एक मैसेज भेज दीजिए कि याद है तेरा बर्थडे है वो बचपन वाला। तो हो सकता है कि क्या उसके दिन की ये सबसे प्यारी नोटिफिकेशन ही बन जाए। और इसी नॉस्टैल्जिया को और भी खूबसूरत बनाने के लिए अगला गाना उन दोस्तों के नाम जो शायद रोज बात ना करे लेकिन यादों में हमेशा साथ होते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
1: भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
2: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: लूटने वाली बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा, तुझे जहाँ कंप्लेंट करनी है
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है जा।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हाँ ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हैप्पी नवरात्रि न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस नवरात्रि की धूम में। दोस्तों देखिए, नवरात्रि की धूम तो जोरों शोरों से यहाँ पर शुरू है क्योंकि मिर्ची नौ लक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स दे रहा है सोने की चेन्स टू लकी विनर्स। और आज हमारे साथ सोने की चेन जीतने के लिए जो कॉलर है उनका नाम है बबीता जी। नमस्ते बबीता जी।
2: नमस्ते नमस्ते,
1: हैप्पी नवरात्रि बबीता जी। आपकी नवरात्रि की तैयारियाँ कैसे चल रही है?
2: चल रही है बस रोज तांगिया खेलने जाते हैं।
1: क्या बात है, कोई मिठाई विठाई खाते होगी नहीं आप?
2: मिठाई तो चल रही है ये।
1: चलिए, आपकी फेवरेट मिठाई क्या है नवरात्रि स्पेशल?
2: नवरात्रि स्पेशल तो मेरी हलवा, मूंग दाल का हलवा।
1: क्या बात है, मूंग दाल का हलवा मेरा भी बहुत फेवरेट है। और मैंने सुना आपने पहले शायद मोदक बोला।
2: गणपति का हो गया ना।
1: जी जी, बट देखिए मोदक वो भी है कि गणपति में भी चलेगा, नवरात्रि में चल, आते रहो लाते रहो।
2: तो एंजॉय करनी है ना।
1: बिल्कुल। तो चलिए उसी के साथ पूछते हैं आपको आज का सवाल। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए टू विन गोल्ड चेन, ठीक है?
2: यस।
1: चलिए तो देखते हैं आपका नवरात्रि के जो गाने हैं उनका नॉलेज कैसा है। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मैंने पायल है छनकाई अब तो आ जा तू हर जाए। ये किस फेमस सिंगर ने गाया है? यार ये तो एकदम टॉप ऑफ द टंग होना चाहिए।
2: फाल्गुनी पाठक है।
1: क्या बात है, इतना टाइम वैसे आपको नहीं मिलना चाहिए था, बट चलिए ठीक है, अभी फाल्गुनी जी ने भी आपको माफ कर दिया। तो अब आप क्वालिफाई तो हो रहे हो अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए। लेकिन देखिए कंपटीशन तगड़ी होने वाली है, तो प्रिपेयर करके आना, इस बार इतना टाइम नहीं मिलेगा हमारे फाइनल राउंड।
2: ओके ओके ओके।
1: तो चलिए बबीता जी, आपसे मुलाकात होगी हमारी वीरानी ज्वेलर्स के स्टोर पर, जहाँ होगा हमारा फाइनल राउंड और वहाँ पर आप जीत सकते हो गोल्ड चेन, ठीक है?
2: ओके।
1: चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस बबीता जी। और दोस्तों अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची नौ लक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स में, तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे मिर्ची के नंबर पे भेजिए 9033647244। या फिर दोस्तों आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची नौ लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर

0: गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुंदर और मिर्ची, इट्स हॉट।
1: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज।

अब ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले रिपोर्टर्स को अगर खुद ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बनना पड़े तो शमशान द लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। OTT पर अक्टूबर 9th को आ रही है इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइव, जिसमें नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। अब जरा इमेजिन करते हैं कि एक रिपोर्टर जो सिर्फ एक स्टोरी कवर करने निकली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में खुद एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती है। और साथ में है देवेन भुजानी, अदिल हुसैन और शेखर सुमन। वैसे मुझे तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जर्नलिज्म, दूसरी तरफ सस्पेंस, और बीच में वो सवाल कि सच तक पहुंचने के लिए ये कितना रिस्क ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्राइम थ्रिलर जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, या वो जहां एक ऑर्डिनरी पर्सन खुद डिटेक्टिव बन जाते हैं? DM मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा ब्रेक देते हैं, क्योंकि अगला गाना है एक ऐसी फिल्म से जहां एक फोन कॉल ने पूरी कहानी ही बदल दी थी। तो अभी आप भी जरा याद करना इस मूवी की स्टोरी क्या थी। फिलहाल बजाते हैं ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana puskabana sakabana. Yambala. Burga burga. La vizba la burga. Mirci burga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट।
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फटना नहीं चाहिए। आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है
1: बताइए। हरा काट के देख।
2: धीरे से। वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
1: तो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: ये पटा
5: कुड़ी कहती बेबी पहला जगुआ ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो।

0: medical doctors.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है। और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इशू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरोडायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स। और साथ ही रेप्यूटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu. एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है और तैयारियां शुरू हो चुकी है आपको सोने की चेन्स देने का भी, क्योंकि इस बार वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लाख का हार। जी हाँ, नवरात्रि की 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस। तो आज किसकी किस्मत खुलती है, चलिए जानते हैं। मेरे साथ है कॉल पर ध्वनित जी। नमस्ते ध्वनित जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: बस फर्स्ट क्लास, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम बढ़िया। तो आप बताइए, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है?
2: एकदम जोर से।
1: क्या बात है, तो चलिए आपकी डांडिया तो रेडी है और हमारे सवाल आपके लिए रेडी है फॉर मिर्ची 9 लाख का हर कॉन्टेस्ट ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। तो आपके लिए जो ये सवाल है बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल है। आपने नवरात्रि के तो बहुत सारे गाने सुने ही होंगे, उसमें से एक गाना है छो घड़ा थारा। तो वो ये जो गाना है छो घड़ा थारा, कौन सी मूवी का गाना है?
2: लव यात्री।
1: पक्का? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ आप आ जाते हो हमारे फाइनल राउंड में और आपको जीतने का मौका मिलेगा सोने की चेन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी नवरात्रि।
2: थैंक यू, सेम टू यू।
1: और दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हो नवरात्रि के इस सुनहरे अवसर पर गोल्ड चेन जीतने का मौका, तो आज ही रजिस्टर कीजिए मिर्ची 9 लाख का हार में ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। चलिए तब तक सुनते हैं अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सेकेंड सीजन इसी स्मॉल टाउन चार्म को वापस ला रहा है, यानी धड़कपुर के लोग उनकी अपनी प्रॉब्लम्स और एक मोबाइल टावर आने से शुरू होने वाली नई नई कॉम्प्लिकेशंस। गजराज राव और रेणुका शाहने जैसे एक्टर्स के साथ ना मुझे ऐसे शोज का ह्यूमर काफ़ी रिलेटेबल लगता है, क्योंकि यहाँ कॉमेडी किसी ग्रैंड सेटअप से नहीं बल्कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग और लोगों के रिएक्शंस की वजह से होती है। वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में किसी भी मोहल्ले में कुछ भी हो जाए, एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसे सबसे पहले सारी बातें पता चल ही जाती है। तो आपके फैमिली या फ्रेंड ग्रुप का ऑफिशियल न्यूज़ रिपोर्टर कौन है? टेल मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अब धड़कपुर के हंगामे से सीधा बॉलीवुड की सुरत तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: छोटी जगहों की एक खास बात होती है कि न्यूज चैनल से पहले पूरे मोहल्ले को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और प्राइम वीडियो पर दुपहिया

फिल्मों का नाम सुनते ही ना हीरो का चेहरा याद आ जाता है, लेकिन कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही सीधा दिमाग में गाना बजने लगता है। शमशान द लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आवारा पन टू वही एक फिल्म है जिसका नाम सुनते ही ना दिमाग में तो यार ओरिजिनल आवारापन के गाने चलने लगते हैं, जैसे कि इमरान हाशमी का वो इंटेंस अंदाज, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, यार एक अलग ही म्यूजिकल मूड था उस फिल्म का। और अब सीक्वल प्राइम वीडियो पर आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात लगती है कि जब भी किसी फिल्म का म्यूज़िक इतना ज़्यादा आइकॉनिक होता है ना, तो सीक्वल से भी एक्सपेक्टेशन सिर्फ स्टोरी की नहीं होती, ऑडियंस उस ओरिजिनल फीलिंग को भी कहीं ना कहीं ढूंढती है। तो आप भी बताइए कि आवारापन का नाम सुनते सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा गाना आता है। टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और क्योंकि बात शुरू है म्यूजिक से, तो चलिए उसी नॉस्टैल्जिया को कंटिन्यू करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची विद माई फेवरेट आवारापन सॉन्ग राइट हियर। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Cámbala! ¡Burga, burga! ¡La virgo a la burga! ¡Mirchi, burga!
1: ¡Hello!
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको? क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये? पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब। मैं हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने, क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो, ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना ऐसे, ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आया ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

नवरात्रि में ना केम छो का कभी कभी जवाब अच्छू भी होता है। शब शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी में अक्टूबर आते ही एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन शुरू हो जाती है, क्योंकि तो एक तरफ तो लोग नवरात्रि के आउटफिट प्लान कर रहे होते हैं या फिर हैलोविन के आउटफिट प्लान कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ घर में टिश्यूज़, कफ ड्रॉप्स और गर्म चाय का स्टॉक बढ़ रहा होता है, बिकॉज फ्लू सीजन इज ऑफिशियली हियर। और हर घर में एक ऐसा इंसान तो ज़रूर होता है जो छींकने के बाद कहता है कि अरे यार कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है। और हर साल यही वो इंसान होता है जो फ्लू से सबसे पहले ग्रस्त होता है। तो जी हाँ, अगले दिन पूरे घर में सबकी आवाज़ आरजे जैसे सीधा हस्की सिंगर जैसे बन जाती है। लेकिन अपना ख्याल रखिए दोस्तों, रेस्ट कीजिए, फ्लू शॉट अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। लेकिन एक सवाल कि यार घर में जब सर्दी हो जाती है तो सबसे पहले क्या बनता है? अदरक वाली चाय, हल्दी का दूध या मम्मी का कोई स्पेशल नुस्खा? जरूर बताना डीएम में और इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और जब गला थोड़ा रेस्ट मांग रहा होता है ना, तो गाने की जिम्मेदारी हम ले ही लेते हैं। इसीलिए आप ही के लिए अगला बॉलीवुड फेवरेट ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी और हमारी यहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ हमारी आपको गोल्ड चेन देने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मिर्ची पर इस बार मिर्ची 9 लख का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स, यानी नवरात्रि की 9 रातें और 9 मौके गोल्ड चेन जीतने के। तो चलिए देखते हैं आज मेरे साथ कौन जुड़ने वाले हैं टू विन गोल्ड चेन। आई हैव विथ मी द वंडरफुल रीमा जी। नमस्ते रीमा जी।
2: नमस्ते जी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं बढ़िया, आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया। तो डांडिया खेलने के लिए तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो वैसे आपका डांडिया का फेवरेट गाना कौन सा है?
2: ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बड़ा सभी अच्छे लगते हैं।
1: तो कुछ भी बजा दो आप डांडिया खेलना चालू कर दोगे, राइट? चलिए, तो आपको मैं पूछूंगी मिर्ची 9 लख का हार इस कॉन्टेस्ट के लिए एक आसान सा सवाल, उसका अगर आप जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, तो तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, ये शाहरुख खान की किस मूवी का गाना है?
2: उड़ी उड़ी जाए।
1: जी देखिए, मैंने आपको हिंट भी दिया, राज
2: रईस का है शायद।
1: पक्का? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, रईस का गाना उड़ी उड़ी जाए, नवरात्रि का सबसे पॉपुलर गाना। इसी के साथ आपको हमारे फाइनल राउंड में आने का मौका मिलेगा टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
2: ऑलराइट, थैंक यू।
1: तो चलिए, आपसे हमारी मुलाकात होगी जल्द ही। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राइट डाउन नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJ_Mirchi_Siddhi. और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: शुभ बादशाह।
1: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: only on Radio Mitchie New York.
1: New York.
0: It's hot.
2: Let's go crazy.